सुप्रभात। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज रविवार है, शक संबत 1948 के आषाढ़ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 12 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:59 हो चुके हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से जबकि 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधान

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में इंग्लैंड ने कल रात साउथैम्प्टन में पांचवें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हरा कर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला डबल्स के फाइनल में आज गुओ हान्यो और लुइसा स्टेफेनी की जोड़ी का मुकाबला क्रिस्टीना माल्डिनोविच और ग्रेबेलिया डाब्रोवस्की की जोड़ी से होगा। यह मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

भक्तों के प्रेम और समर्पण में सदा के लिए ऋणी हो जाने वाले प्रभु की माया का कोई पार नहीं पा सकता। वे सर्वसमर्थवान होकर भी अपने प्रिय भक्तों को ही सर्वस्व विजय का श्रेय प्रदान करते हैं और इन सब कार्यों को उन्हीं की कृपा मानते हैं।

हे जगदम्बे भवानी सर्वजन कल्याणी, आपसे दोनों हाथ जोड़कर शीश को नवाकर ये प्रार्थना करती हूँ कि आप समस्त संसार के प्राणियों की बुद्धि को निर्मल करें, सबके कष्टों को मिटाकर

जाने मन जाने मन जाने मन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन जाने मन जाने मन जाने मन।

आज के कार्यक्रम वंदना में जिन भक्ति रचनाओं को आपने सुना उन्हें स्वर प्रदान किया, हरिओम शरण नंदिनी शरण, लखबीर सिंह लखा, राजेंद्र मेहता और नीना मेहता, और ये देशभक्ति परक रचना आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में। इसी के साथ कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त हुआ।

0: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रकाश किरण। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं सामवेद से पाठ। आलेख और वाचन समवेद स्वरों में है। आइए सुने कार्यक्रम प्रकाश किरण।
1: भारतीय आर्य यज्ञ में जिन प्रिय वचनों को मधुर स्वर में गा गा कर दैवी शक्ति को संतुष्ट व प्रसन्न करते थे, वे सब सामवेद में संग्रहित हैं। इस वेद के मंत्रों के गायन में 60 स्वरों का प्रयोग किया जाता रहा है। कहते हैं कि इसी वेद से गांधर्व वेद का उद्भव हुआ, जिससे हमें संगीत शास्त्र की विभिन्न राग रागनियों का परिचय प्राप्त होता है। लीजिए, प्रस्तुत है इस वेद के गीतात्मक कुछ मंत्र।
2: अगस्त्य यामी के द्वे

आज के कार्यक्रम प्रकाश किरण में आप सुन रहे थे सामवेद से पाठ, समवेद स्वरों में। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज के प्रसंग को स्वर प्रदान किया है उत्तरा केलकर और उषा मंगेशकर ने। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने निकले हैं। पुरवासियों ने जैसे ही ये समाचार पाया, फिर तो नारी पुरुष उन दो राजकुमारों की अनुपम छवि देखने ऐसे भागे जैसे खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। दोनों भाइयों के रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि जीत ली हो। नगर किशोरियां उनके अद्भुत रूप को देखकर जैसे अपने को रोक नहीं पाती। ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो उस मनोहारी छवि को देखकर मोहित ना हो जाए। एक सखी महाराज दशरथ के पुत्रों को बाल राजहंसों का जोड़ा बताती है। श्याम शरीर तथा कमल जैसे नेत्रों वाले कौशल्या पुत्र राम हैं और वो जिनका गौर वर्ण है किशोरावस्था वाले सौमित्र लक्ष्मण हैं। दोनों भाइयों ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु राक्षसों का वध किया है। श्री राम की छवि देखकर एक सखी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, ये वर जानकी के योग्य है, राजा जनक यदि इन्हें देख लें तो अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सीता का विवाह इनसे कर देंगे।

अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस गान। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे आज की दोनों सभाओं में अनुप्रसारित और प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आज सांध्यकालीन सभा में रात्रि 9:30 पर आपको सुनवाएंगे प्रादेशिक संगीत। रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम लेकर आएंगे रात्रि 10:00 से। प्रातःकालीन सभा में अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि प्रातः के 6:50 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम खेती की बातें। बकरी फार्म पर होने वाले प्रमुख प्रबंध कार्य के विषय में जानकारी देंगे विजय सिंह नौलखा। भूले बिस्तरे गीत कार्यक्रम लेकर आएंगे प्रातः 7:00 और प्रादेशिक समाचारों का समय होगा प्रातः 7:18 का। कार्यक्रम ब्रजमाधुरी के अंतर्गत आप सुनिएगा अपने ही फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम ब्रज लोक लहरी प्रातः 7:31 पर। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि प्रसारित होगा प्रातः 8:30 से। प्रातः 9:00 आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ भजन। कलाकार होंगे डॉ. शांतनु चौधरी। सामयिक चर्चा ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा प्रातः 9:15 से। नदियां और पर्यावरण ये विषय होगा आज के कार्यक्रम आबोहवा का। आलेख और वाचन स्वर भैरूलाल महावर का होगा। प्रातः 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम बाल गोपाल। इस प्रायोजित कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्याम सुंदर धानुका सरस्वती विद्या मंदिर वृंदावन के बच्चों के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम। कार्यक्रम पेश करेंगी बच्चों की दीदी निधि मित्तल। प्रातः 10:00 का समय होगा कार्यक्रम वार्ता का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा पानी के संरक्षण के संदर्भ में बिन पानी सब सून विषय पर जुड़ी हुई वार्ता। वार्ताकार होंगे विजय कुमार आर्य और आपसे भेंट करता होंगे ओपी सिंह। समय याद रखिए प्रातः 10:00 से। फरमाइशी फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी लेकर आएंगे दिन में 11:00 से और कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का प्रसारण समय रहेगा दिन में 11:30 का। जगदीश ब्रजवासी के गाए हुए लोकगीतों का प्रसारण आज होगा कार्यक्रम ब्रज लोकगीत में दोपहर 12:30 से। दोपहर 1:10 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम इस मास का गीत। 1:15 का समय होगा डॉ. अशला नागर की लिखी हुई झलकी तब और अब का। प्रस्तुति होगी सतीश माथुर की। श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ ही कार्यक्रम लेकर आएंगे दोपहर 1:30 से। आज के कार्यक्रम में आपके साथ होंगे ओपी सिंह और संजय सारस्वत। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का प्रसारण होगा दोपहर 2:30 से और 3:00 हमारी पहली सभा का भी समापन होगा। सांध्यकालीन सभा प्रारंभ होगी संध्या 5:30 से कार्यक्रम युववाणी के साथ। आज की बात का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय सकारात्मक शांति और मानवीय एकता दिवस। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम

का समय होगा संध्या 6:15 का। चर्चा होगी बरसात के मौसम में डेयरी और पशुधन प्रबंधन। दूसरा विषय रहेगा किसान क्रेडिट कार्ड लाभ और उपयोग। आज ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे अपने पसंद के लोकगीतों को मन भावन के अंतर्गत। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय होगा संध्या 6:45 का। ब्रज साहित्य कार्यक्रम का समय होगा संध्या 7:05 का। आज आप सुनेंगे उद्धव शतक सो पाठ। शाम सुहानी कार्यक्रम, जी हाँ, फरमाइशी फिल्म संगीत का पसंदीदा आपका ये कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 7:31 से। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम लेकर आएंगे रात्रि 8:30 पर। और कार्यक्रम सुहाने तराने का प्रसारण समय होगा रात्रि 9:15 का। रात्रि में 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार और 11:10 पर हमारी सांध्यकालीन सभा का समापन होगा। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। बकरी फॉर्म पर होने वाले प्रमुख प्रबंध कार्य, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं विजय सिंह नौलखा।
1: किसान भाइयों, आज हम बकरी फॉर्म पर होने वाले प्रमुख प्रबंध कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से दो प्रकार के बकरी फार्म हमारे देश में प्रचलित हैं। अर्ध सघन आधारित फॉर्म, इस पद्धति में बकरियों को 4 से 5 घंटे चराई के साथ ही प्रतिपूरक आहार दिया जाता है। दूसरी तरह का फॉर्म है सघन पद्धति आधारित फॉर्म। इस फॉर्म पर बकरियों को चरने के लिए नहीं भेजा जाता, फॉर्म पर ही उनके चारे, दाने एवं स्वास्थ्य रक्षा की व्यवस्था की जाती है। व्यावसायिक रूप से अधिक संख्या में बकरी पालन करने के लिए फॉर्म का होना अति आवश्यक है। फॉर्म पर बकरियों का उचित ढंग से प्रबंधन करने में आसानी होती है। फॉर्म पर वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग भी सरलता से किया जा सकता है। बकरी फॉर्म पर मुख्य रूप से बकरियों से दूध निकालना, दाना चारा खिलाना, फॉर्म की सफाई, रोगी बकरियों की चिकित्सा, समय समय पर टीकाकरण एवं प्रजनन संबंधी कार्य प्रमुख रूप से किए जाते हैं। फॉर्म पर बकरियों का रिकॉर्ड बनाना तथा दाने चारे एवं दवाइयों का विवरण भी अंकित किया जाता है। 100 बकरियों के लिए 70 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा आवास बनाना होगा। इसके साथ ही आवास के बाहर भी पर्याप्त जगह की आवश्यकता होती है, जिससे कि बकरियां वहां आराम से घूम फिर सकें। बकरी फार्म पर श्रमिकों के अलावा एक सुपरवाइजर होना चाहिए, जिसे बकरी पालन का व्यवहारिक ज्ञान हो। साथ ही बकरियों के प्रबंधन में वो कुशल भी होना चाहिए। नई बकरी फार्म को खोलने से पूर्व आप CIRG मखदूम फरह के व्यावसायिक बकरी पालन पर होने वाले प्रशिक्षण से प्रबंधन कौशल का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बकरी फार्म पर चारा दाना खिलाने हेतु फीडर, पानी की चरही, चारा काटने की मशीन, स्प्रेयर, दूध निकालने के बर्तन, खुरपी, हसिया, चारा काटने हेतु डंगी तथा बकरियों का नाखून काटने हेतु नेल कटर, घास काटने की मशीन एवं नियमित पानी की व्यवस्था हेतु बिजली का समरसेबल पंप या मोटर होना अति आवश्यक है। 100 से अधिक संख्या में होने पर बकरियों को नर मादा के अलग समूह में रखते हैं। 3 माह से ऊपर के बच्चों या मेमने को अलग रखने की व्यवस्था की जाती है। बकरी के छोटे बच्चों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बकरी के छोटे बच्चों को मौसम तथा बीमारियों का अधिक प्रभाव पड़ता है। बकरी के नवजात बच्चों को पैदा होने के बाद आधे घंटे के भीतर खीस पिलाना चाहिए, जिससे बकरी के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। बकरी के बच्चों में निमोनिया, एंटोटॉक्सीमिया तथा कॉक्सीडियोसिस रोग प्रमुखता से होते हैं। निमोनिया के बचाव के लिए ठंड के दिनों में बकरी के बच्चों को बंद बाड़े में रखना चाहिए तथा फर्श पर सूखी घास की बिछावन देना चाहिए। एंटोटॉक्सीमिया से बचाव के लिए 3-4 माह की आयु में बच्चों को टीका लगवाना चाहिए। साथ ही कॉक्सीडियोसिस रोग से ग्रसित बच्चों में दस्त की समस्या हो जाती है, इसके बचाव के लिए बाड़े की सफाई ठीक ढंग से रखनी चाहिए। अगर फर्श कच्चा हो तो उस पर चूने का छिड़काव

0: सप्ताह में एक बार अवश्य कर लेना चाहिए। यदि बकरियां चरने के लिए जाती हैं तो इन्हें प्रतिपूरक आहार के रूप में दाना चारा दिया जाता है। एक वयस्क बकरी को आधे से एक किलोग्राम हरा चारा, 300 से 400 ग्राम भूसा तथा 150 से 200 ग्राम दाना देना आवश्यक है। बकरियों को हरे चारे के स्थान पर चारा वृक्षों से प्राप्त पत्तियां भी खिलाई जा सकती। बकरी फार्म को सुचारू रूप से चलाया जाए, बकरी की अच्छी नस्ल रखी जाए और उसके खान पान एवं बकरियों के रोगों की रोकथाम का उचित प्रबंध किया जाए तो बकरियों की मृत्यु दर कम होगी, साथ ही बकरियों में अधिक उत्पादन आप ले सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी न्यूजीलैण्डदेशस्य स्वीयाम् ऐतिहासिकीं द्विदिवसीय यात्रां सम्पन्नं कृत्वा भारतं प्रति प्रस्थितवान्। विगतचत्वारिंशत् वर्षेभ्यः अनन्तरम् एषा कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः प्रथमा न्यूजीलैण्ड यात्रा आसीत्, या उभयदेशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धान् नूतनां गतिम् अददात्। यात्रा समये प्रधानमन्त्री मोदी न्यूजीलैण्ड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्ताम् अकरोत्। उभौ नेतारौ रक्षा, पर्यटन, क्रीडा, पद प्रबन्धन, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालनादिषु क्षेत्रेषु पञ्च ज्ञापन पत्राणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। अस्याः यात्रायाः प्रमुखाकर्षणेषु अन्यतमः कार्यक्रमः ऑकलैण्ड नगरस्य स्पार्क अरीना इत्यत्र आयोजितः प्रवासी भारतीय समुदायस्य समागमः आसीत्, यस्मिन् 10,000+ प्रवासी भारतीयाः समुपस्थिताः आसन्। समागमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् भारत न्यूजीलैण्ड देशयोः भविष्यं परस्परं सम्बद्धमस्ति।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: प्रधानमन्त्री मोदी सस्नेह स्वागताय न्यूजीलैण्ड देशस्य प्रधानमन्त्रिणं क्रिस्टोफर लक्सन इत्येतं प्रति कृतज्ञतां प्रकटितवान्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् भारतं पारम्परिक रक्षा सामर्थ्यस्य उन्नत प्रौद्योगिकीनां च सुदृढीकरणेन दृढम्, आत्मनिर्भरं, भविष्यस्य आह्वानेभ्यश्च अनुकूलं रक्षाबलं निर्माति। असौ एतत् विशाखापत्तनम् नगरे भारतीय नौसेनायाः पूर्वी नौसेनादले प्रोजेक्ट 17A इत्येतस्य अन्तर्गते स्वदेशे निर्मितस्य षष्ठयुद्धपोतस्य INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य समावेशन समारोहं सम्बोधयन् अवदत्। रक्षामन्त्री अवदत् यत् INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य नौसेनायां सम्मेलनम् भारतस्य सामुद्रिक सामर्थ्यस्य स्वदेशी रक्षा क्षमतायाश्च सुदृढीकरण दिशि अन्यत् महत्वपूर्णं सोपानमस्ति। पश्चिम बंगाल प्रशासनेन राज्याय UCC इति समान नागरिक संहितायाः प्रारूप विधेयकस्य परीक्षार्थं नव सदस्यात्मिका समितिः निर्मिता। अस्मिन् विषये अधिसूचना पूर्वमेव प्रकाशिता अस्ति। सेवानिवृत्त न्यायमूर्तिः रंजना प्रकाश देसाई समितेः अध्यक्षत्वेन नियुक्ता। मेघालयस्य पूर्व राज्यपालः तथागत रॉयः अपि समितेः सदस्येषु अन्यतमः अस्ति। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरणेन खाद्य सुरक्षा मानकाधिनियमस्य 2006 इत्यस्य

गीता दत्त और मन्ना डे के युगल स्वरों में आपने सुना अपराधी कौन फिल्म का ये गीत। गीत को रचा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत था सलील चौधरी का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: जी।
1: मिस्टर एंड मिसेस 55, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजों में। गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत था ओपी नैयर का। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, फिल्म आशियाना से। गीत को आवाज दी है तलत महमूद ने, शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत मदन मोहन का।

उमा देवी के स्वर में आपने सुना अनोखी अदा फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा था शकील बदायनी ने, संगीत था नौशाद का। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

0: लता मंगेशकर और तलत महमूद के युगल स्वरों में आपने सुना परछाइयां फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा था नूर लखनवी ने, संगीत था सी रामचंद्र का। और इसी के साथ कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7:18 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ, यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई कर...

0: कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज चलाया जाएगा पौधरोपण महाअभियान। एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कल कुशीनगर में किया 525 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। गोरखपुर में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। अयोध्या में हुई श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। 30 जुलाई तक सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरा करने का तय हुआ लक्ष्य। समिति अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्र ने चढ़ावा घबरा मामले में कहा, भविष्य में नहीं होगी इसकी पुनरावृत्ति। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जारी की भारी वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से प्रदेशव्यापी पौधरोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ किया जाएगा। इस पौधरोपण महाअभियान के जरिए प्रदेश सरकार की ओर से 35 करोड़ पौधरोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से अभियान का शुभारंभ करेंगे। श्री योगी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के समीप और रामगढ़ ताल रिंग रोड के किनारे एक पेड़ माँ के अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित कर वे प्रदेशवासियों से पौधरोपण महायज्ञ में हिस्सेदारी करने का आह्वान करेंगे। अभियान में प्रदेश के सभी विभाग, स्कूल कॉलेज और संस्थान हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम को लेकर गोरखपुर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट।
3: पौधरोपण के इस लक्ष्य में गोरखपुर को 55,28,600 पौधरोपण की जिम्मेदारी मिली है। सभी पौधशालाओं में गुणवत्ता युक्त पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। पौधों के बेहतर विकास एवं उत्तर जीवित के लिए चिन्हित रोपण स्थलों पर एडवांस सॉइल वर्क के अंतर्गत गड्ढा खुदाई, टॉप सॉइल की व्यवस्था, पौधरोपण के स्थलों का विकास, पौध संरक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं तथा अन्य तैयारियां पूरी है। कुल 27 विभागों के सामंजस्य से यह पौधरोपण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए जीएन चौबे, गोरखपुर।
2: हमारे संवाददाता ने बताया कि ये अभियान 27 विभागों के सहयोग से चलाया जाएगा।
4: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेस वे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कुशीनगर जिले के रामकोला विकासखंड के टुकू अटार में आयोजित एक कार्यक्रम में कुशीनगर, रामकोला और हाटा विधानसभा क्षेत्रों की 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद कुशीनगर जिले की तस्वीर बदल गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कुशीनगर को इंसेफेलाइटिस से मुक्त कर बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया है। साथ ही मुसहर जाति के लोगों को आवास के साथ सरकारी योजनाओं का

0: लाभ देकर जीवन को बेहतर बनाया है। श्री योगी ने बताया कि कुशीनगर भी बाकी जनपदों के साथ विकास की यात्रा में सहभागी बन रहा है। जल्द ही कुशीनगर को एयर कनेक्टिविटी के जरिए जेवर एयरपोर्ट समेत अन्य राज्यों से जोड़ा जाएगा।
1: साथ भी कुशीनगर को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, गया के साथ जोड़ने जा रहे हैं। अच्छे और नए एयरक्राफ्ट कुशीनगर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अब हमारे कुशीनगर के नौजवानों को अपनी खेती को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं, कुशीनगर में ही हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे चुके हैं। कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में ही बन रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कल ही गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं को लाभार्थियों के प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से प्रगति होगी और इससे देश में समृद्धि आएगी।
1: स्पीड जितनी अच्छी होती है कनेक्टिविटी के लिए, प्रगति उतनी ही तेज होगी, और प्रगति होगी तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की भी, समाज की भी और देश की भी समृद्धि होगी। समृद्धि होगी तो खुशहाली होगी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या में कल श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में मंदिर निर्माण से जुड़े विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बाउंड्री वॉल, ट्रस्ट भवन, गेट नंबर 3, अतिथिगृह, ऑडिटोरियम सहित अन्य निर्माण कार्यों की स्थिति पर चर्चा हुई। इन सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए उनकी टाइमलाइन भी तय की गई। आज होने वाली बैठक में 20 दीर्घाओं वाले राम कथा संग्रहालय के तकनीकी पहलुओं और वीडियो प्रस्तुतियों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक से पूर्व श्रीराम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्र ने बताया कि 30 जुलाई तक राम मंदिर के सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे होने का लक्ष्य है। उन्होंने मंदिर चढ़ावा गबन मामले पर कहा कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी, आने वाले दिनों में व्यवस्थाओं में सुधार होगा।
2: यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है, और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी।
0: विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कल प्रदेश के कई जिलों में जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि जनसंख्या में संतुलन ही समृद्ध समाज का आधार है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लोगों से जनसंख्या संतुलन और परिवार कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लेने की अपील की। आगामी श्रावण मास के दौरान होने वाली कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से विभिन्न जिलों में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वाराणसी में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कल संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मार्ग पर की जा रही तैयारियों को बारीकी से देखा और श्रद्धालुओं की सुविधा सुरक्षा से जुड़े सभी बिंदुओं की समीक्षा की। अधिकारियों ने निर्देशित किया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। गोरखपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का 7वां स्थापना दिवस कल संस्थागत गौरव, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के प्रति संकल्प लेने के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल डॉक्टर विभा दत्ता ने संस्थान के सामूहिक संकल्प को रेखांकित किया। संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर हेमंत कुमार ने कहा कि एम्स गोरखपुर सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। सिद्धार्थनगर जिले में कल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 146 नवजोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार जनता के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है। प्रदेश के कई जिलों में कल से वर्षा का क्रम जारी है। कुछ जिलों में अधिक वर्षा के कारण जल जमाव होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है।

मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया है। विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। उधर लगातार हो रही वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी का जलस्तर खतरे

0: की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, गोरखपुर में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं की दी सौगात, अयोध्या में हुई श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक, 30 जुलाई तक सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरा करने का तय हुआ लक्ष्य, समिति अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा ने चढ़ावा गबन मामले पर कहा भविष्य में नहीं होगी इसकी पुनरावृत्ति, और प्रदेश के कई जिलों में बारिश से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जारी की भारी वर्षा की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7:31 हुए हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

विभिन्न प्रकार के लोकगीत आप पसंद करो हो और हम वही तरियां आपको फिर आपके पसंदीदा लोकगीतन को सुनवा रहे हैं। तो हमारे पास तो संदेश लगातार आए रहे हैं। सबसे पहलो संदेश जो आयो कार्यक्रम में वाई पढ़े जे संदेशों मिलो है हमें खुर्जा उत्तर प्रदेश ते तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा को। इनके संग जे अगलो संदेशों मिलो हिमांशी, आरना, क्रियांश, पवन और इनको समस्त परिवार मंडी रामदास मथुरा थे जिन्होंने जी संदेश भेजो है। और जी हमारे श्रोता हैं चकला बाजार समाना शहर पंजाब ते पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू मह खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल और समस्त खुशदिल परिवार जा संदेश को भेज रहे है। और जे संदेश आयो पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर ते भेजे बारे हमें श्रोताएं राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, इनको जे संदेश मिलो कार्यक्रम में हमने शामिल किया। और अगलो संदेश पढ़ें आपके काजे तो जे संदेश आयो हमारे पास कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ ते देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार देव तामूरिया, डॉली बेबी पूजा तामूरिया, राधिका प्रभा देवी तामूरिया और इनको पोता है तो मास्टर अल कबीर, इन सब के संदेश प्राप्त भय। और इस संदेश में तो जिन्होंने ये भी लिखो है कि भैया ब्रज माधुरी के प्रति आकर्षण बढ़ते ही जा रहे हैं तो अच्छी बात है, आकर्षण बढ़ेगा तभी तो आप हमारे संग जुड़े रहोगे लगातार, रोज आपके जा कार्यक्रम में हम भिन्न भिन्न लेकर कार्यक्रम आवे हैं ब्रजमाधुरी में तो आनंद लो रोज। और आज तो आनंद आपको आपके पसंदीदा लोकगीत को सुनवावेंगे तो सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं डोरी लाल गोला के स्वर में गायब है जा लोकगीत को।

कार्यक्रम ब्रजमाधुरी में आप सबन को खूब खूब स्वागत और एक बार फिर से आपके जहाँ पसंदीदा कार्यक्रम को लेके आए गए हैं। आज रविवार को दिना है तो आज सबकी प्रतीक्षा समाप्त होगी अपने फरमाइश के लोकगीतन को सुनवे के ताई, अपने नामन को सुनवे के ताई। भैया बहुत से ऐसे हमारे श्रोता हैं जो अपने नामन को सुनना चाहें, अपने परिवारिक जनन के संग बैठ के जहाँ कार्यक्रम को सुने हैं, आनंद ले हुए हैं हमारी ब्रज लोकगीतन की परंपरा को भिन्न।

प्यारो लगे री बरसानो, हमें तो बड़ो प्यारो लगे। अभी आपने सुने ओझा लोकगीत को अपने पसंद पे तोरीलाल गोला के स्वर में। और अब पढ़ें आपके दूसरे संदेशन को। तो जे संदेश है रिंगनी छत्तीसगढ़ ते दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा को, जिनके संग अगलो संदेश मिलो हमें राजू लवानिया, पंकज कुमार, अर्पण जी खेम जी, पंचम लाल चतुर्वेदी जी को खंदौली आगरा ते। और इनके बाद पढ़ें जे संदेश मिलो है अमलतास अम्बरीन होम्स कटारा भोपाल मध्य प्रदेश ते, योगेश्वर सिंह भारतीय, भैरव प्रताप सिंह भारतीय, लोकेंद्र प्रताप सिंह भारतीय, प्रेम बाई भारतीय, गोपाल भारतीय, कृष्णा भारतीय, अमिता भारतीय, श्रीमती ललता बाई भारतीय, न्यू पैसिफिक अपार्टमेंट बावड़िया क्लब भोपाल ते, डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, डॉक्टर गीता शामनानी, दुर्गा भारतीय, अमिता भारतीय, ग्राम पोस्ट बाया तहसील रेहटी जिला सीहोर मध्य प्रदेश के जो श्रोता हैं, अमर सिंह भारतीय, महेंद्र भारतीय, सचिन भारतीय, कोशाबाई भारतीय और जिनके सगरे संगी साथी। जे संदेशा आयो गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊ नाथ भंजन उत्तर प्रदेश ते, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा को संदेशों मिलो। और जय संदेश पढ़ रहे हैं जे संदेशों मिलो है बिरला नगर ग्वालियर ते प्रदीप भैया को। और जी हैं जय जोहार केवे बारे हमारे श्रोता ग्राम बीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ ने, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, आप सबको सुनवावे हैं आपकी पसंद पे शशि तिवारी और सखियन की गायब है जा लोकगीत को।

चंदा छिप जा बादर में, अब भाई आपने सुनो शशि तिवारी और सखियन के स्वर में अपने पसंद किए जा लोकगीत को, और अगली पसंद की तय आपके संदेशन को पढ़ें तो ये संदेश आयो नरगोड़ा छत्तीसगढ़ ते महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी को। जी हमारे श्रोता हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, ओम कुमार कुमकुम गुड़िया, और जे संदेश आयो पटेल नगर मलोट ते डॉक्टर रामेश रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू को। जी हमारे श्रोता फरमाइश अपने पसंदीदा फरम लोकगीत को सुनवे के ताई भेज रहे हैं। जसवंत नगर जिला इटावा से गोकर्ण सिंह, दिव्या नैतिक, संगीता और सवई इनके परिवारीजन। जय श्रोता हमारे जुड़े हुए हैं ग्राम पंचायत बठेन पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश प्रमिला बंछुर, और हिसार के जय श्रोता जुड़े हुए हैं हमारे संग। जय श्रोता हैं राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी और इनके सगरे संगी साथी। दतरंगी से जुड़े हुए हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। हाथरस जिला सादाबाद से कुकु जितेंद्र, भूपेंद्र, निशा, गुंजन, संजना, आयुष, राशि, प्रिया, समस्त प्रजापति परिवार हमारे को जिस संदेश भेज रहे हो है, और जिनके संग एक और संदेश पढ़े हैं उमा शर्मा, नितिन, सचिन।

राधिका निधि धोली प्याओ मथुरा से जा संदेश को शामिल करवे के तई कह रहे हैं और आपको संदेशों शामिल भयो। श्री राधा सिटी गोवर्धन रोड मथुरा के श्रोता जुड़ गए हैं हम संग शारदा प्रसाद प्रजापति लक्ष्मी व्योमिनी बेबी व्योमिनी पुरंजय प्रजापति कविता गोविंद सिमरन और समस्त प्रजापति परिवार जी हमारे श्रोता जुड़ गए हैं अलीगंज बेनज़ीर जिला रामपुर ते धर्मपाल सैनी हिमांशु सैनी अरुणा सैनी नैन्सी सैनी और इनको समस्त परिवार। तो आपको सुनवावे हैं आपकी पसंद पे माधुरी शर्मा की गायब है जा लोकगीत को।

माधुरी शर्मा में के स्वर में लोकगीत सुनवे के तई जो संदेशो मिलो। बस स्टैंड के आगे बड़ा चौक बजरिया रोड छतरपुर बुंदेलखंड ते बहादुर चक्रवर्ती नंद किशोर चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती बड़े भैया हरिराम बड़े भैया दशरथ श्रीमती शीला भाभी जसोदा भाभी इनको छोटो भांजा बड़ो भांजा दीदी बड़ी दीदी अंश मोहिनी गोलू नीरज और समस्त बुंदेलखंड निवासी और जे श्रोता भी जय लोकगीत को सुनना चाह रहे थे जे हैं भोपालगढ़ राजस्थान ते धर्मेंद्र छीपा कपिल छीपा ईशान छीपा और पूजा परिहार।

और कार्यक्रम के अगले लोगी के ताई आपके संदेशन को शामिल करें। हमारे श्रोता जुड़े हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा और इनके परिवारी जन। जे श्रोता हैं यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से, विनोद खड़से और इनके सगरे संगी साथी। रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिम्पल देवांगन जुड़े हुए हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। और दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ के श्रोता जुड़े भए हैं हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा और सगरे संगी साथी। जे हैं यादव बंधु बस स्टैंड लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, राजेश यादव, रामोतार यादव, यदुवीर सिंह, दीपक, राधिका, राम गोपाल और इनके संगी साथी। जे श्रोता जुड़े भए हैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा ते बिरड़ी नाना जी, लाम से मीना, लाम से तेजस, जय लाम से हर्षिता, लाम से और सगरे संगी साथी। जे श्रोता जुड़े भए हैं विष्णुपुरी मथुरा ते श्याम सुंदर गौतम। और अब आपको सुनवावें मीरा देवी, मीरा दीक्षित की गाय भे जा लोकगीत को।

आप सब खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो और हमारे कार्यक्रम ब्रजमाधुरी के संग जैसे ही ऐसे ही जुड़े रहो। जय कामना के संग कार्यक्रम को समय तो समाप्त है, चले हुए आपसे मांगे हैं अनुमति, स्वीकार करो हमारी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण सुनिए।
1: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोसकोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र

0: गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता युरियाले माओ तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकवोक द्वीप के पास रट नगोवाई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है।

0: इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमरीका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमरीका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमरीका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए दो अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्प्टन में 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
0: और अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने INS महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ AI से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है, हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं, इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब एक हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा सम्पन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज

0: for next 4 days. England beat Norway 2-1 to reach FIFA World Cup semi-finals, and Linda Noskova beats Carolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत था एस टी वर्मन का। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कार्यक्रम गीतांजलि का ये अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म हंसते जख्म से। इस गीत को लिखा है कैफी आजमी ने, संगीत है मदन मोहन का।

आशा भोसले की आवाज़ में आपने सुना स्वीकार किया मैंने फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था विठल भाई पटेल ने, संगीत था उषा खन्ना का। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

जानी दुश्मन, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत को लिखा था वर्मा मलिक ने, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का। और आइए सुनते हैं इन्हीं आवाज़ों में सुहाग फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।

मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और भूपिंदर के स्वर में आपने सुना सुहाग फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: और इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं पर समाप्त हुआ।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शांतनु चौधरी के गाए हुए कुछ भजन।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट. बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
1: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत. आज के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं डॉक्टर शांतनु चौधरी के गाए हुए कुछ भजन. आइए सुनते हैं ये अगली भक्ति रचना.

0: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शांतनु चौधरी के गाए हुए इस भजन को। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त हुआ।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:15 होने वाले हैं। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सामयिक चर्चा। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे, युवाओं में ईयरफोन के लगातार इस्तेमाल से बढ़ रहे हियरिंग लॉस के खतरे पर बलरामपुर अस्पताल के ईएनटी विभाग के डॉक्टर हिमांशु प्रताप सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं ओम अवस्थी।
2: लगातार लंबे समय तक ईयरफोन का इस्तेमाल हमारे कानों पर क्या असर डालता है, आखिर क्यों युवाओं में टिनिटस की बीमारी बढ़ रही है और बच्चे स्लीप एपनिया के शिकार हो रहे हैं, और बढ़ते प्रदूषण और वह बदलती लाइफस्टाइल में इन बीमारियों के लक्षणों को नजरअंदाज करना क्यों भविष्य में बड़ी मुसीबत बन सकता है, इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं बलरामपुर अस्पताल के ईएनटी विभाग के डॉक्टर हिमांशु प्रताप सिंह। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है सर।
3: धन्यवाद, नमस्कार।
2: पिछले कुछ वर्षों में युवाओं में हियरिंग लॉस और टिनिटस के मामले बढ़े हैं, आपके पास इससे जुड़े किस तरह के मरीज आ रहे हैं और इसके पीछे क्या वजह आपको नजर आई?
3: आमतौर पर टिनिटस की जो समस्या होती है ये ओल्ड एज के लोगों में ज्यादा मिलती है। उम्र के साथ कान की नसें धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाती हैं और कान में सीटी बजना, सनसनाहट होना, झेंगुर की आवाज आना, भारीपन रहना, ये समस्या रहती है। मगर आज के परिवेश में यंग एज के जो बच्चे हैं या टीनएजर्स कह लें, जो आजकल मोबाइल के फोन पे हैं या हेडफोन लगा के लगातार क्लासेस लेते हैं, पढ़ते हैं या म्यूजिक सुनते हैं लाउड नॉइज में, तो ये समस्या आजकल टीनएजर ग्रुप में ज्यादातर मिल रही है और मान के चलिए 10-20% पूरी ओपीडी में टिनिटस की कंप्लेन वाले बच्चे आने शुरू हो गए हैं।
2: क्या ईयरफोन का लगातार इस्तेमाल सुनने की क्षमता को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाता है और क्या इसका पूरी तरह से इलाज संभव है?
3: देखिए, जो नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस होता है यानी तेज आवाज के कारण जो कान की सुनने की क्षमता गिरती है, वो दो तरह की होती है। एक टेम्पररी शिफ्ट जो साधारणतः प्रिकॉशन लेने पे या समय पे इलाज कराने पे वापस आ जाती है, और दूसरी होती है जो परमानेंट शिफ्ट। परमानेंट शिफ्ट जैसे तेज धमाके या इस तरह के लाउड एक्सपोजर में लगातार रहने से फिर वो हियरिंग लॉस परमानेंट शिफ्ट में जाता है। होता यह है कि कान के जो सबसे अंदर का हिस्सा है वहां पर इनर हेयर सेल्स होती हैं, लगातार तेज आवाज इन्हीं इनर हेयर सेल्स को धीरे धीरे कमजोर कर देता है और मृत पाय जाती है। चूंकि इनका रिजेनरेशन यानी कि दोबारा ये ठीक नहीं होती है, इसीलिए ये टिनिटस की समस्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर हियरिंग लॉस में भी बदलती है। तो जो ईयरफोन का यूज कर रहे हैं लगातार, उसमें के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप कितनी देर तक और किस इंटेंसिटी पे अपने कान को लाउड नॉइज का एक्सपोजर दे रहे हैं। यदि ये मध्यम इंटेंसिटी पर है और बीच बीच में आप उसमें थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं तो ये समस्या नहीं आएगी, लेकिन अगर लगातार आप उसका ओवर यूज कर रहे हैं तो ये समस्या धीरे धीरे टिनिटस की कान में सीटी बजना, सनसनाहट होना, कुछ लोगों में ईयरफोन लगाने के कारण कान में एक भारीपन बना रहता है, हल्का हेडेक रहता है, सर में दर्द रहता है, अनिद्रा, यानी ये सब भी सारे कैरेक्टर हैं। केवल टिनिटस ही नहीं है, चिड़चिड़ापन है, लैक ऑफ स्लीप है, आंखों पे ग्लेयरिंग सिम्टम्स हैं, ये सारे भी इसके साथ रेडिएशन के इफेक्ट के दायरे में आते हैं।
2: जी, आपने जैसे बताया कि ये दो तरह से होता है, तो सुनने की क्षमता कम होने के शुरुआती संकेत क्या है, मतलब वो क्या लक्षण है जिससे माना जाए कि आप डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है?
3: आमतौर पे ये जैसे कोई भी टीवी का प्रोग्राम देखते समय रिमोट से वॉल्यूम बढ़ा लेना, किसी व्यक्ति के बोलने पे बार बार उसकी तरफ इशारा करके बोलना आपने क्या कहा, सर में भारीपन बना रहना और ऐसा लगना कि आवाज कान तक तो आ रही है लेकिन कहीं ना कहीं हमको कान में उसकी क्लैरिटी प्रॉपर नहीं है, तो ये शुरुआती लक्षण है जिसको आप टाइम पे अगर देखते हैं, पहचानते हैं, या जहां पर शोर नहीं है आप वहां बैठे और कान में आपके सीटी या सनसनाहट की आवाज बनी हुई है, तो जैसे ही लक्षण शुरू हो, कान की कोई प्रिसीडिंग यानी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि आपको कोई कान की बीमारी रही है, सब कुछ सामान्य ही था, तो सब सामान्य रहने के बाद लाउड साउंड करने के बाद अगर इस तरह के लक्षण आए, सर में भारीपन है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, कान में सीटी बज रही है, तो फिर डॉक्टर को दिखाना जरूर चाहिए।
2: अभी हाल ही में इस संदर्भ में एम्स में एक स्टडी हुई जिसमें डॉक्टर्स ने एक फॉर्मूला दिया 60-60 रूल और उसको अपनाने की सलाह दी, इसके बारे में थोड़ा बताएं ये क्या है और इससे किस तरह से मदद मिलती है?
3: ये 60-60 रूल बेसिकली इसलिए बनाया गया है कि यदि आप लगातार कान में तेज आवाज का इस्तेमाल हो रहा है या कोई क्लासेस कर रहे हैं या कॉल सेंटर में काम करने वाले हैं तो 60 मिनट तक आप कान में ईयरफोन का इस्तेमाल करें, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसके 60% से ऊपर ना जाएं। जैसे मान लीजिए जो वॉल्यूम है वो 0 से 10 के बीच में, तो उसको 6 से ऊपर ना बढ़ाएं। दूसरा, अगर 85 डेसिबल से ऊपर आप लगातार कोई भी चीज लगातार सुन रहे हैं तो वो कान में टेम्पररी शिफ्ट को परमानेंट शिफ्ट की तरफ धकेल देता है। तो 60-60 रूल यही है कि 60 मिनट और 60% ऑफ इंटेंसिटी, और उसके बाद कम से कम 5 से 10 मिनट का फिर ब्रेक लें। दो ढाई ढाई घंटे जो लगातार ऑनलाइन लगे रहते हैं वो ठीक नहीं है। 10 से 15 मिनट का ब्रेक आपके कान को सुरक्षित भी रखेगा और आपकी सुनने की क्षमता भी बनी रहेगी।
2: अच्छा, क्या जैसे आपने बताया कि ब्रेक लेना जरूरी है, क्या कोई ऐसी भी लिमिट है कि दिन भर में कितनी देर तक ईयरफोन का इस्तेमाल करना सुरक्षित माना गया है?
3: देखिए,

0: में कोई इस तरह की शोध नहीं है, बस ये कहा जाता है कि कोई भी चीज की इंटेंसिटी अगर 85 डेसिबल से ऊपर लगातार 3 से 4 घंटे से ज्यादा है तो वो नुकसानदेह है।
1: जी, आजकल मार्केट में कई तरह का इस तरह का भी है कि नॉइज कैंसलेशन हेडफोन आ गए हैं जो सामान्य हेडफोन की तुलना में सुरक्षित बताए जाते हैं। क्या वाकई इस तरह का कुछ फर्क पड़ता है या कोई भी हेडफोन हो हमें ये 66 रूल्स को अपनाना ही चाहिए?
0: जो ANC करके रूल आया है वो ये कहते हैं कि वो बहुत सारी जैसी साउंड है जो कान में बाहर से भी आ सकती थी, ये अगल बगल से भी आ सकती थी, उसको वो थोड़ा सा इंटेंसिटी उसकी कम कर देते हैं तो थोड़ा सेफ हो जाता है। और हेडफोन में ये अभी कोई इसका स्टैंडर्ड पैमाना तो बना नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ जो ओवरहेड यूज हेडफोन्स है वो बेटर माने जाते हैं जो ईयर में हम लोग लगाते हैं प्लग के तौर पे, तो जो बड़े साइज के ओवरहेड हेडफोन है दे आर बेटर देन द प्लग साइज हेडफोन्स।
1: ओके, जैसे ये जो आपने बताया इन सावधानियों के साथ ही आदमी को किस तरह के अगर ये सिम्टम्स हैं किन लोगों को हियरिंग टेस्ट रेगुलर बेसिस पे कराना चाहिए या मतलब ये टेस्ट के लिए कब जाना चाहिए?
0: देखिए सुनाई में कोई भी किसी भी तरह की किसी भी एज में दिक्कत अगर हो रही है, स्कूल गोइंग एज में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओल्ड एज में भी इंपॉर्टेंट है और यंग एज में भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी तरह से कान में भारीपन, कान में सीटी या सनसनाहट, बातचीत करने के समय ऐसा लगना कि हमको कान में कुछ महसूस सा हो रहा है तो फिर आपको तुरंत जाके एक बार ENT चेकअप करा लेना चाहिए। ओल्ड एज में तो मुझे लगता है कि अगर आप 60+ है तो आपको कम से कम साल में एक बार जाके ENT डिपार्टमेंट दिखाना चाहिए। जैसे आई के लिए विजन टेस्ट होता है वैसे कान के लिए ऑडियोमेट्री टेस्ट होते हैं, तो एक वर्ष में अगर एक बार आप जाके ऑडियोमेट्री टेस्ट करा लेते हैं तो आपको अपनी श्रवण शक्ति का भी अंदाजा लग जाता है या उसमें अगर कोई कमी आ रही है तो समय से उसका इलाज भी शुरू हो जाता है।
1: जी निश्चित, ये एक टेस्ट कराना तो है ही, अगर क्या इसके अलावा कोई बेसिक प्रैक्टिसेस हैं, घरेलू उपाय हैं, कोई आदतें हैं जिनको हम अपना सकते हैं कानों को स्वस्थ रखने के लिए?
0: कानों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे अच्छी चीज तो ये है कि जो हमारी एक परंपरा चली आ रही है जो तेल डालने वाली, ये कान में पानी और तेल कान को दोनों से बचाना चाहिए। यदि आपका कान बार बार खराब होता है, इन्फेक्शन होता है, तो कॉटन में वैसलीन लगा कर नहाए पहली चीज। दूसरा, नियमित अंतराल पे अगर आपको कान में दर्द बना रहता है तो अपने मन से कहीं से भी लेकर कोई भी दवा कान में ना छोड़े, क्योंकि यदि कान का इन्फेक्शन है या कान में वैक्स है या कान में फंगल इन्फेक्शन है तो ये किसी एक दवा के कारण नहीं बल्कि उसी की दवा के द्वारा ही ठीक होगा। तो घर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कान में तेल और पानी ना जाए, किसी भी दवा का ब्लाइंडली इस्तेमाल ना किया जाए, और थोड़े से भी लक्षण अगर होते हैं तो जाके एक सिंपल सा रेगुलर चेकअप करा सकते हैं।
1: जी, सुनने संबंधी दिक्कतों के साथ साथ आजकल छोटे बच्चों में स्लीप एपेनिया की समस्या भी बढ़ी है, यह क्या है और माता पिता इसे कैसे पहचान सकते हैं?
0: देखिए स्लीप एपनिया बेसिकली एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, ये स्लीप एपनिया बेसिकली एक सिंड्रोम है, स्लीप एपनिया सिंड्रोम, और जनरली छोटे बच्चों में ये ओबेसिटी के साथ भी आता है कि जैसे मोटापा बहुत ज्यादा है बच्चों में, खान पान गड़बड़ है बच्चे का। तो इसको समझने का दो तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि स्लीप एपनिया का जो बच्चा है या एडल्ट भी है तो रात को वो खर्राटे ले रहा है कि नहीं, उसके खर्राटे बहुत तेज हैं कि नहीं। दूसरा, क्या दिन में उसको हर समय सुस्ती बनी रहती है या कहीं भी दिन में 2 मिनट के लिए बैठता है तो सो जाता है। तो अगर ये दोनों चीजें बनी हुई हैं तो चाहे एडल्ट हो चाहे बच्चा हो, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अब दूसरा, स्लीप एपनिया छोटे बच्चों में क्या होता है कि कभी कभी एडिनॉइड के कारण भी, क्योंकि एडिनॉइड क्या है, एक लिम्फेटिक टिश्यू है जिसे टॉन्सिल होते हैं, तो गले के अंदर अगर टॉन्सिल बढ़े हैं और नाक के पीछे अगर एडिनॉइड बढ़ा है तो निस्संदेह उस व्यक्ति को नाक के रास्ते सांस लेने में दिक्कत आएगी। जब सांस लेने में दिक्कत आएगी तो वो खर्राटे लेगा, ये खर्राटे धीरे धीरे धीरे धीरे आपके शरीर में ऑक्सीजन की रात में मात्रा कम कर देते हैं। अब जब शरीर में से ऑक्सीजन की मात्रा ब्रेन में जो पहुंचती है कम हो जाती है तो अचानक से झटके के साथ नींद खुलती है, नींद खुलती है तो एयर हंगर होता है। तो ये अगर बार बार ये प्रक्रिया बनी रहती है तो इसका धीरे धीरे मस्तिष्क पर भी और हृदय पर भी दोनों पर ही इसके दुष्परिणाम होते हैं।
1: आपने खर्राटे का जिक्र किया, क्या हर खर्राटा लेने वाला मतलब बच्चा हो या एडल्ट, क्या वो खतरे की निशानी है या ये खर्राटे लेना एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है?
0: खर्राटे ये डिपेंड करता है कि खर्राटे रात में आप जो आपके स्लीप साइकिल है उसमें कितनी अवधि तक है। यदि किसी समय आपकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है या तक के कारण सर ऊंचा हो जाता है और थोड़ी देर के लिए पॉस्चरल चेंज के कारण खर्राटे आते हैं तो ये सामान्य है, लेकिन अगर पूरी रात आपका खर्राटे बने रहते हैं, सुबह आप उठते हैं तो आपको थकान से महसूस होती है, बॉडी लो एनर्जी लेवल का फील करता है, दिन में आप किसी भी समय सो जाते हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं आपको झपकी आ जा रही है, तो फिर ये लक्षण इस बात इंगित करते हैं कि ये आपका जो स्नोरिंग है ये अब बीमारी वाली स्नोरिंग है, ये साधारण स्नोरिंग नहीं है।
1: आपने खान पान और मोटापे का जिक्र किया कि स्लीप एपनिया के लिए एक कारण वो भी होता है, तो इसका इलाज क्या है? क्या सर्जरी इसका इलाज है या जीवन शैली में बदलाव करके भी इसको ठीक किया जा सकता है?
0: देखिए छोटे बच्चों में अगर स्नोरिंग है, खर्राटे, स्लीप एपनिया पे मैं नहीं बात कर रहा अभी, मैं स्नोरिंग पे पहले बता रहा हूँ कि अगर स्नोरिंग आ रही है बच्चे को और उसको लगातार स्नोरिंग के कारण उसकी साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, उसकी ग्रोथ डिस्टर्ब हो रही है, तो ENT चेकअप कराएं। अगर अगर एडिनॉइड बहुत बड़े हुए हैं और टॉन्सिल बहुत बड़े हुए हैं तो वो सर्जिकली उसको रिमूव करके वो सामान्य जीवन जी सकता है। जनरली जो एडिनॉइड होते हैं वो टीनेज तक आते आते 13-14 साल तक अपने आप खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर वो बने

0: हुए हैं, परसिस्टेंट किए हुए हैं, तो कभी कभी ये यंग लोगों में भी मिलते हैं और परसिस्टेंट रहते हैं, तो उसको नाक की जांच के जरिए, दूरबीन की जांच के जरिए देखा सकता है, एक्सरे करा के देखा सकता है और उसका इलाज किया सकता है। यंग ऑनसेट जो एज में स्लीप एपनिया है, ये थोड़ी सी ट्रबलसम इसलिए है कि जब आपके दिमाग तक ऑक्सीजन की सही मात्रा नहीं पहुंचती है और उसके सारे लक्षण आपको दिखने लगते हैं, खर्राटे भी आते हैं, बॉडी लो फील करती है और सर में भारीपन बना रहता है, तो बहुत से लोग मशीन लेते हैं, सीपैप मशीन लगाते हैं और बहुत से लोग सर्जिकल जाते हैं। उसमें ये कहा जाता है कि आपका जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स है, उसको फॉलो करिए। फिर उसको फॉलो करके अगर आप अपनी ओबेसिटी को कम करते हैं, अपना भोजन का समय शाम को जल्दी रख लें, सुबह नियमित व्यायाम कर लें, भोजन बहुत भारी न लें, अगर ये सारी चीज करते हैं तो ये समस्या काफी हद तक बिना सर्जरी किए दूर की जा सकती है। तो योगा और एक्सरसाइज और डाइट प्लान, ये तीनों चीजें मिलकर इसको काफी हद तक ठीक कर सकते हैं।
1: निश्चित रूप से ये डाइट बहुत महत्वपूर्ण रहती है और योगा वगैरह भी। इसके साथ ही जैसे आजकल प्रदूषण के कारण भी लोगों को नाक कान और गले से जुड़ी दिक्कतें बढ़ रही हैं, ऐसे में जो लोग लगातार फील्ड में रहते हैं या जिनको ऐसी जगहों पे काम करना है जहाँ पे प्रदूषण थोड़ा ज्यादा रहता है, तो वो लोग क्या सामान्य सावधानियां रखनी चाहिए उनको और वो कैसे अपने नाक कान गले को स्वस्थ रख सकते हैं?
0: देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो है मॉर्निंग में उठ के डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अगर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपका जो नासिका से लेकर श्वसन तंत्र है वो एक बार पूरे दिन के लिए सक्रिय हो जाता है। दूसरा, कोविड के दिनों में जब पॉल्यूशन खत्म हो गया था तो बहुत सारे मरीज ऐसे थे जो एलर्जिक ट्रीटमेंट ले रहे थे, कि तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत आराम मिला। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्रिकॉशन। यदि आप ढंग से प्रिकॉशन लेते हैं, कोई ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा धुआं है, धूल है, प्रदूषण है, मास्क का इस्तेमाल जो लोग करना भूल गए हैं वो मास्क का फिर से इस्तेमाल करें, बचें, ड्यूरेशन से बचें। जैसे कि साउंड में ड्यूरेशन है, वैसे इसके साथ भी है, पार्टिकल जो नाक के रास्ते होते हैं श्वसन तंत्र तक पहुंचता है और फिर वो धीरे धीरे एलर्जी और फिर एलर्जी आगे कन्वर्ट होकर अस्थमा में कन्वर्ट होती है। तो जितनी भी एलर्जिक के पेशेंट्स हैं, लगभग 40% पेशेंट बाद में धीरे धीरे अस्थमा में कन्वर्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो एलर्जी के लक्षण को पहचानें। अगर छोटे बच्चे में शुरू से ही कुछ इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, नाक बह रही है बार बार, छींकें बहुत आ रही, जुकाम बना हुआ, कान में भारीपन है, तो उसको सीधा स्क्रीनिंग कराएं उसकी, कि कहीं वो एलर्जिक तो नहीं है। और यदि वो एलर्जिक है तो फिर उस हिसाब से धीरे धीरे करके उनके आसपास की सारी चीजें जो उस तरह के एलर्जेंस वाले हैं उससे उनको दूर रखें। और सेम अगेन चीजें कि अच्छा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज, ये इसका बेनिफिट इसमें भी मिलता है आपको कि आगे चल के आपके एलर्जी के लक्षण कम होने लगते हैं।
1: जी, ये जो एलर्जी के लक्षण, बहुत सारे लोगों में ऐसी भी दिक्कतें आती है कि जैसे ही सीजन चेंज होता है वो तुरंत ही बीमार पड़ जाते हैं या उनका गला खराब हो जाता है या लगातार उन्हें बार बार जुकाम होता है, इसकी क्या वजह होती है, उनको क्या ध्यान रखना है, क्यों ये हर सीजन चेंज पे उनको ये प्रॉब्लम होती है और ये सिर्फ सर्दी में नहीं इवन गर्मी में भी उनको ये दिक्कत होती है, बारिश में भी होती है?
0: देखिए, एलर्जी वाला पार्ट को बोलते हैं एलर्जी मार्च। होता यह है कि जब एलर्जी का सीजन आता है तो सीजन का मतलब यह कि जब पॉलन्स निकलते हैं उस समय मैक्सिमम एलर्जी होती है। वो पॉलन धीरे धीरे वायुमंडल में फैल जाते हैं और आपके नाक से श्वसन तंत्र तक पहुंचते हैं और वहां से एलर्जी के सिम्टम शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन एलर्जिक राइनाइटिस, उनको 12 महीने कुछ ना कुछ इस तरह की समस्या बनी रहे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें जाकर अपना ब्लड टेस्ट कराएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके लक्षण पहचाने कि अगर छींके बनी हुई है लगातार, आंख में खुजली रहती है, तलों में खुजली रहती है, तालू में लगता है आपको ऐसा है, या साथ साथ आपको ऐसा लगता है कि बीच बीच में हमारे कान भी बंद हो रहे हैं एलर्जी के कारण, या आप नाक में हमेशा एक इचिंग सेंसेशन बना रहता है, स्नीजिंग बहुत ज्यादा होती है, फेशियल हैवीनेस लगता है, चेहरे पे भारीपन लगता है, और आंख के नीचे अगर हल्की सी ब्लैकनिंग आ रही है, तो आप इसका मतलब कहीं ना कहीं एलर्जी के पेशेंट हैं। और इन लक्षणों को फिर पहचानते हुए फिर जाकर अपना ट्रीटमेंट तुरंत शुरू कराएं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि छोटे बच्चों के लिए ये जो एलर्जी टेस्ट हो रहे हैं, ये जो स्क्रीनिंग हो रही है, एक एडल्ट जिसकी बार बार नाक बंद हो रही है या गले की समस्या से जो पीड़ित है, वो ऐसे कौन से सामान्य दो चार टेस्ट हैं जो करा सकता है और इसके बारे में सामान्य जानकारी इकट्ठा कर सकता है?
0: आप देखिए, एडल्ट अगर है तो केवल अपने लक्षणों को पहचाने वो एलर्जिक है या नहीं। किसी एक विशेष मौसम में नाक का बंद होना, नाक से पानी गिरना, छींके आना, सर में भारीपन रहना लगातार, या नाक से सांस लेने में कठिनाई होना, अगर ये 5-6 लक्षणों में कोई भी लक्षण आपके पास बार बार आ रहे हैं तो फिर सीधा अपने ENT सर्जन को कंसल्ट करें। मैं कहूं कि दो तीन चीजों को अगर अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इन सबके पीछे एक इलाज है, वो है इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप एलर्जी से लड़ सकते हैं। बाकी एलर्जी से बचने का प्रिकॉशन है केवल, वो प्रिकॉशन को आपको फॉलो करना है। और इम्यूनिटी अच्छी करनी है तो जैसे अपने डाइट में आंवला है, हल्दी है, शहद है, ये इनको इंकॉर्पोरेट करें तो आपको शायद एलर्जी की बहुत दिनों तक दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: निश्चित रूप से हमारे श्रोता आपके दिए गए सुझावों को अपनाएंगे और अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करेंगे जिससे उन्हें नाक कान और गले से जुड़ी समस्याओं से निजात मिलेगा। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: सामयिक

0: चर्चा में अभी आप सुन रहे थे युवाओं में ईयरफोन के लगातार इस्तेमाल से बढ़ रहे हियरिंग लॉस के खतरे पर बलरामपुर अस्पताल के ईएनटी विभाग के डॉक्टर हिमांशु प्रताप सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार थे ओम अवस्थी। आकाशवाणी के लखनऊ।
1: आप सुन रहे हैं FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी मथुरा वृंदावन के कार्यक्रम।
2: श्रोताओं, प्रातः के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बाल गोपाल। कार्यक्रम को पेश कर रही हैं निधि मित्तल। आइए सुने ये कार्यक्रम बाल गोपाल।

0: बच्चों जय हिंद। बच्चों गर्मी है अभी, लेकिन दो चार बार बारिश हो गई तो उसका मतलब ये नहीं है ना कि गर्मी नहीं है। अभी तो गर्मी बहुत है। दो चार बार बारिश हो गई थोड़ा फर्क तो पड़ता है, और दो चार बार बारिश हो जाए तो अच्छा लगता है, थोड़ी ठंडक हो जाती है ना बच्चों। तो इन दिनों एक फल आता है, फल तो बच्चों बहुत आते हैं इन दिनों, आम भी बहुत आता है, लेकिन खास कर इन दिनों एक फल आता है, जामुन। जामुन तो बच्चों आप सब खाते हो। जामुन तो बच्चों बरसात के शुरुआत में आता है ये फल, है ना, और जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। और जामुन का रंग बच्चों पता है कैसा होता है? गहरा बैंगनी रंग का होता है, और ये बहुत खट्टा मीठा होता है बच्चों, अच्छा लगता है लेकिन। और सब बच्चों को अच्छा लगता है। और जामुन खाने से बच्चों पता है क्या होता है? हमारा पेट ठीक रहता है, शरीर मजबूत बनता है, और जो जामुन के बीज होते हैं ना बच्चों वो बहुत काम आते हैं, उनसे दवाई बनाई जाती है। जामुन का जो पेड़ होता है वो हमें छाया और ठंडी हवा भी देता है, और जामुन का जो पेड़ होता है स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, उससे हमें विटामिन सी और आयरन मिलता है। और बच्चों जो जामुन की गुठली होती है आपने अक्सर देखा है, हम भी करते हैं आप भी करते हैं, जामुन खाया गुठली फेंक दी, ये तो होता है स्वाभाविक, कौन जामुन की गुठली रखता है। लेकिन बच्चों जामुन की गुठली बहुत लाभकारी होती है, यह आयुर्वेदिक औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ये तो हुई जामुन की बात, है ना बच्चों। और अब हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं अपनी यूनिफॉर्म पहनकर विद्यालय के बच्चे। आज ये बच्चे अपनी अलग अलग प्रस्तुतियां आपको सुनाएंगे, तो हम और आप बैठकर सुनते हैं इनका ये रंगारंग कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्याम सुंदर धानुका, सरस्वती विद्या मंदिर, वृंदावन।
1: नमस्कार, परम आनंद का विषय है कि आज हमारे मध्य अपनी आध्यात्मिक, भक्तिमय, सांस्कृतिक एवं हास्य प्रस्तुतियों को लेकर हाजिर हो रहे हैं श्याम सुंदर धानुका, सरस्वती विद्या मंदिर के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राएं। आइए इनका स्वागत करते हैं। अब अपनी मधुर आवाज में वातावरण को भक्तिमय करने आ रहे हैं कक्षा नर्सरी के ध्रुवांश।

0: क्योंकि माहौल भक्तिमय हो चुका है, तो इसी माहौल की निरंतरता को बनाए रखते हुए सृष्टि गौतम आएंगी वैदिक मंत्रों के साथ।
1: नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि गौतम है। आपके सामने भगवान सूर्य से संबंधित मंत्र अर्थ सहित प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रथम मंत्र, आदि देव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते प्रभाकर नमोस्तुते प्रभाकर नमोस्तुते। अर्थात, हे सूर्यदेव, आप इस सृष्टि के आरंभ से हो। मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। दूसरा मंत्र, हे सूर्यदेव नमस्तुभ्यम तेजो राशे जगतपते ज्ञानम देहि यशो देहि आरोग्यम देहि भास्कर। अर्थात, हे सूर्यदेव, आपको मेरा नमस्कार है। आप तेज के भंडार और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। हे भास्कर, हमें ज्ञान प्रदान कीजिए, यश दीजिए तथा उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। तीसरा मंत्र, नमः सूर्याय शांताय सर्वरोग निवारणे आयुः आरोग्य दात्रे च नमः श्री भास्कराय ते। अर्थात, हे शांत स्वरूप सूर्यदेव, आपको नमस्कार। आप आयु और आरोग्य प्रदान करने वाले हो। धन्यवाद।
0: सृष्टि गौतम के वैदिक मंत्रों के बाद अपने गीता श्लोक को लेकर आ रहे हैं रुद्राक्ष।

नमस्कार, मेरा नाम रुद्राक्ष है। मैं श्याम सुंदर धानुका सरस्वती विद्या मंदिर का छात्र हूँ। मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के कुछ प्रमुख श्लोकों को अर्थ सहित प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

0: नश्यति, इसका अर्थ है क्रोध के कारण मोह या भ्रम होता है। उस भ्रम के कारण स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मरण शक्ति के भ्रमित होते ही बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होते ही मनुष्य का विनाश या पतन हो जाता है। द्वितीय श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मात्रे संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है मनुष्य का अधिकार केवल अपना कर्म और कर्तव्य करने पर ही है, उसके फल पर नहीं। इसलिए हमें पूरी लगन और ईमानदारी से अपना कर्म करना चाहिए। तीसरा श्लोक, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धायुजस्य स्व नैवं पापं व्याप्ससि। इसका अर्थ है सफलता या असफलता से घबराए बिना कर्तव्य करते रहना चाहिए। धन्यवाद।
1: गीता के श्लोक से ज्ञान लेने की बात हो अथवा बात संस्कृति की, हमें आवश्यकता होती है अपने प्रेरणा स्रोत की। तो अपने प्रेरणा स्रोत को लेकर आ रहे हैं श्याम सुंदर धानुका के छात्र कार्तिकेय मिश्रा।

0: तस्सै नमस्तस्सै नमो नमः। नमस्कार, मेरा नाम कार्तिकेय मिश्रा है। आपके समक्ष मेरी प्रेरणा विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी माँ ही मेरी प्रेरणा का स्रोत है। कठिन समय में भी धैर्य, मुस्कान और साहस के साथ प्रतिदिन आगे बढ़ने की प्रेरणा मुझे उनसे ही मिलती है। वह मुझे परिश्रम, अनुशासन और ईमानदारी का महत्व भी सिखाती हैं। मैंने माँ से ही सीखा है कि जीवन में सफलता का मार्ग छोटा रास्ता नहीं होता, बल्कि निरंतर मेहनत ही सफलता से हमारा परिचय कराती है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उनके ही बताए मार्ग पर चलकर अच्छा एवं सफल इंसान बनना चाहता हूँ। धन्यवाद।
1: ज्ञान मिल गया, संस्कृति मिल गई। चलिए तो फिर थोड़ा सा गुदगुदा लेते हैं। श्याम सुंदर धानुका, सरस्वती विद्या मंदिर की छात्रा, तेजसी।
2: नमस्कार, मैं आज आप सभी के सामने काका हाथरसी की एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरठ में हमको मिले धमधूसर कव्वाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, खरबूजे से गाल, दे हाथी सी पाई, लंबाई से ज्यादा थी उनकी चौड़ाई, बस से उतरे इक्को के अड्डे तक आए, बस से उतरे इक्को के अड्डे तक आए, दर्शन कर घोड़ों ने आंसू टपकाए, रिक्शे वाले डर गए इस डील डॉल को देख, रिक्शे वाले डर गए इस डील डॉल को देख, हिम्मत कर आगे बढ़ा तांगे वाला एक, तांगे वाला एक, ₹4 मैं लूंगा, दो फेरी कर हुजूर को पहुंचा दूंगा। तभी आई संयोग से एक कार, पहुंचाया होटल में मिला कमरा नंबर 4, कमरा नंबर 4, तुरंत धोबी बुलवाए, अपने कुर्ते पाजामे उनके आगे सरकाए, धोबी बोला बात नहीं है वश की मेरे, धोबी बोला बात नहीं है वश की मेरे, और किसी से धुलवाना ये तंबू डेरे, ये तंबू डेरे। धन्यवाद।
1: ज्ञान हुआ, संस्कृति हुई, गुदगुदाना भी हो गया, और ये सब हुआ समूह में। तो फिर कमी रह गई समूह गान की। श्याम सुंदर धानुका की छात्राएं और छात्र लेकर आ रहे हैं समूह गान। इस समूह गान में सम्मिलित हैं हिमानी, अदिति, ख्वाहिश और निर्वी।

0: छात्र छात्राएं हों श्याम सुंदर धानुका सरस्वती विद्या मंदिर वृंदावन से, और वहां पर ब्रज 84 कोस की बात न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे मध्य आ रही हैं प्रज्ञा, और वो हमें बताएंगी महत्ता ब्रज 84 कोस अर्थात ब्रज भूमि की।
1: मेरा नाम प्रज्ञा है। आज मैं आपको गोलोक स्वरूप ब्रज धाम की कुछ विशेष जानकारी देना चाहूंगी। इस जानकारी में ब्रज के प्रमुख भाग एवं कुछ महत्वपूर्ण संख्याएं सम्मिलित हैं। ब्रज 84 कोस। ब्रजमंडल वह पवित्र क्षेत्र है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल एवं किशोर लीलाएं की। इसका विस्तार लगभग 252 से 270 किलोमीटर माना जाता है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। ब्रज 84 कोस के प्रमुख तीर्थों में शामिल है मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि, वृंदावन रास और भक्ति की भूमि, गोवर्धन गोवर्धन पर्वत और 21 किलोमीटर परिक्रमा, बरसाना श्री राधा रानी की जन्म स्थली, नंदगांव नंद बाबा का निवास, गोकुल श्री कृष्ण का बाल्यकाल, बलदेव दाऊजी मंदिर, राधा कुंड और श्याम कुंड अत्यंत पवित्र कुंड। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा सामान्यतः 40 दिन की मानी जाती है, हालांकि आजकल 7, 15 या 21 दिनों में भी श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। यह परिक्रमा आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और लाखों श्रद्धालु हर वर्ष इसमें भाग लेते हैं। ब्रज 84 कोस परिक्रमा में अनेक वन कुंड सरोवर पर्वत और मंदिर आते हैं। प्रमुख पड़ाव इस प्रकार माने जाते हैं मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि, गोकुल नंद भवन, रमण रेती महावन, बलदेव दाऊजी मंदिर, गोवर्धन गोवर्धन पर्वत, मानसी गंगा, राधा कुंड एवं श्याम कुंड, बरसाना श्रीजी मंदिर, नंदगांव नंद भवन, वृंदावन बाकी बिहारी, नितिवन सेवा कुंज, पुनः मथुरा में परिक्रमा का समापन। ब्रज क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रमुख संख्याएं इस प्रकार भी है। परिक्रमा 84 कोस, 4 देव, 5 महादेव, 3 पर्वत, 12 वन, 24 उपवन, 4 प्रमुख सरोवर, 134 प्रमुख तीर्थ तथा एक शक्तिपीठ श्री माँ कात्यायनी यहाँ ब्रज क्षेत्र में स्थित है। बोलिए ब्रज धाम की जय, बाकी बिहारी लाल की जय।
0: ब्रज धाम 84 कोस के बाद अपनी संस्कृति की व्याख्या करने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हो रही हैं श्याम सुंदर धानुका सरस्वती विद्या मंदिर की छात्रा हिमानी।
2: मैं हिमानी

0: मेरी संस्कृति विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति मानी जाती है। मूल रूप से यह वैदिक युग से आरंभ हुई। समय के साथ इस पर विभिन्न धर्म, संप्रदाय, जाति, मत और आचार विचार का प्रभाव पड़ता गया। हमारे यहाँ आंतरिक ज्ञान और कर्तव्य परायणता को महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए हम विश्व गुरु भी कहलाए। हमारे संस्कार व संस्कृति धर्म, आस्था, योग, नैतिकता से परिपूर्ण है। इतिहास साक्षी है। बच्चे हो या बड़े, सभी में देशभक्ति की भावना सर्वोपरि रही है। भारतीय संस्कृति एक अनमोल रत्न है। एकता, अनुशासन और श्रद्धा का धन है। हमारी संस्कृति विश्व में अद्वितीय और आकर्षण का केंद्र है। हमारी विरासत वीरों का संगम, मिट्टी की सुगंध से सुशोभित है। जहाँ भगवान ने भी अवतार लिए, राम, कृष्ण, बुद्ध की यह पवित्र भूमि रामायण और गीता के माध्यम से मुक्ति का संदेश देती है। शरणार्थियों की यह भूमि विश्व में प्रेरणा का स्रोत है। धन्यवाद।
1: हिंदी हुई, संस्कृत हुई, कमी रह गई हमारी अपनी ब्रजभाषा की। इसी ब्रजभाषा में एक भक्ति कथा को प्रस्तुत करने आ रहे हैं श्याम सुंदर धानुका के छात्र वेदांत चतुर्वेदी।
2: मेरा नाम वेदांत चतुर्वेदी है। मैं श्याम सुंदर धानुका सरस्वती विद्या मंदिर को छात्र हूँ। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की एक लीला प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ठाकुर जी की एक दिन नजर पड़ी हरी मिर्च पर। बाबा जे खाऊंगो, सोई बाबा ने नीचे छुपा ली रोटी के। बोले जे नहीं खाते, जे खाओ देखो जे कितने बढ़िया बने हैं। दूसरे दिना फिर नजर पड़ गई। ठाकुर जी आज सोच के बैठे कि वे ही हरी वारी खानी है, जे कोई बहुत ही बढ़िया मिठाई है जो मैं बाबा मोए खान ना देते हैं, कहीं मैं रोज ना मांगवे लग जाऊं या मारे मुँह ते छुपा मैं। आज ठाकुर जी पहले से ही बिल्कुल योजना बना के बैठे कि आज वो ही हरी वारी खानी है। जैसे ही बाबा भोजन पावे लगे, ठाकुर जी बोले मैं नहीं खा रहा हूँ, आप खाओ। और जैसे ही अवसर मिलो, ठाकुर जी ने मिर्चा उठाई और नंद बाबा हाथ पकड़ते, तब तक तो मुँह में डाल के गप और दातन तय चिर चिर करके खान लगे। अब जैसे ही ठाकुर जी ने खाई महाराज, यहाँ तो नंद बाबा के पसीने छूट गए। अरे यशोदा जल्दी आ, क्यों लाला के तो बोल बोल सब बंद हो गए, गाल लाल पड़ गए, आंखन ते आंसू। अब तो भैया ठाकुर जी रो मैं सो रो मैं, जीभ निकाल के रो मैं, खांस खांस के रो मैं, जीभ पकड़ के चिल्ला मैं। मैया बोली लाला तू बड़ो शैतान है, चौंखाई तेने मिर्चा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बड़न की बात माननी चाहिए और कहू की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।
1: और कार्यक्रम के भक्तिमय समापन के लिए हमारे विद्यालय की सबसे छोटी कक्षा की छात्रा तुलसी शर्मा आ रही हैं अपनी प्रस्तुति लेकर।

0: ने मुन्ने छात्र छात्राओं की जो पधारे थे श्याम सुंदर धानुका सरस्वती विद्या मंदिर रुक्मणी विहार वृंदावन से। धन्यवाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्याम सुंदर धानुका सरस्वती विद्या मंदिर वृंदावन। तो बच्चों, अभी आपने हमारा ये विद्यालय का प्रोग्राम सुना। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा बच्चों, हमें जरूर बताना। हमारे कार्यक्रम का पता नोट करिए, बाल गोपाल कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा, पिन नंबर है 281003। बच्चों जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बाल गोपाल। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया निधि मित्तल ने।
1: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आज दोपहर 1:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ। आज आपके साथ इस कार्यक्रम में होंगे ओपी सिंह और संजय सारस्वत।

दोपहर 1:15 पर आज आप सुन सकेंगे डॉक्टर अचला नागर की लिखी हुई झलकी तब और अब। प्रस्तुति सतीश माथुर की होगी।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है ये विशेष भेंट वार्ता जल संरक्षण के संदर्भ में, बिन पानी सब सून। वार्ताकार विशेषज्ञ हैं विजय कुमार आर्य और आपसे बात कर रहे हैं ओपी सिंह। आइए सुनते हैं ये विशेष बातचीत।

0: पानी गए न उबरे मोती मानस शून। बात व्यक्ति के विकास की हो, बात स्थिति और परिस्थिति की हो, या बात जीवन के मूल्यों की हो, पानी सबके पीछे रहा है। पानी की कहानी ही दरअसल व्यक्ति की कहानी है, पानी की कहानी ही दरअसल सभ्यताओं की कहानी है, और पानी ही हमारे जीवन का और हमारा अस्तित्व हमेशा रहा है, आज भी है और कल भी रहेगा। क्योंकि अगर पानी नहीं है तो मानवीय अस्तित्व क्या, जीव के अस्तित्व की भी कोई कहानी संभव नहीं है। इस बात को समय समय पर साहित्यकारों ने, कवियों ने, चिंतकों ने, समाज के जागरूक लोगों ने और ऐसे लोगों ने, सामान्य व्यक्ति ने भी इस बात को पहचाना है, माना है। और इसीलिए भारतीय संस्कृति में विशेषकर अगर हम कहें कि प्रकृति के पास का जीवन ही दरअसल वास्तव में जीवन है, प्रकृति में पूज्य का भाव देखना भी कहीं ना कहीं इसी बात की ओर इंगित करता है कि जो हमारे जीवन के आधार है, हमारे पंच महाभूत हैं, जिसमें आप जल भी एक है, तो उन पंच महाभूतों के समुच्चय से ही हमारा जीवन बना है और उनके संरक्षण का काम जब तक समाज करता रहेगा,
1: बिल्कुल
0: सभ्यता करती रहेगी, तब तक इस समाज की और व्यक्ति की कहानी चलती रहेगी। तो बिना पानी के सब कुछ सूना है, इस बात को आज हम आगे बढ़ाते हैं। और इस बात के पीछे दरअसल एक मंतव्य है कि अभी पिछले समय हमारे देश के एक बहुत बड़े व्यक्ति, जिनको जल पुरुष की संज्ञा भी दी जाती है, राजेंद्र सिंह जी, उन्होंने पानी के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया और पानी के संरक्षण की ऐसी विधि जो स्थानीय है, लोगों के अनुभव से जनित होती है, जो समस्या ग्लोबल है लेकिन उसका समाधान वो लोकल सुझाते हैं, तो ऐसे महापुरुष का आना हुआ। और उनके कुछ वक्तव्यों को लेकर के आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं विजय कुमार विद्यार्थी जी, वो रहे हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि दरअसल वो जो कहते हैं उसको एक व्यक्ति के तौर पे अगर हम उस बात को ले जाना चाहें तो कहाँ कहाँ हमें सोचने समझने की और चिंतन की जरूरत पड़ेगी। विद्यार्थी जी, आज के हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत, नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार सिंह साहब। ये बिल्कुल सही विषय आपने आज उठाया है, जल संकट और उससे निपटने के उपाय।
0: जी
1: बिल्कुल, ये 16 आना सत्य बात है कि जल के बिना जीवन ही नहीं है और पृथ्वी पर संभवतः जीवन इसीलिए संभव हो पाया है कि यहां सबसे पहले पानी पैदा हुआ। और आज अगर हम दूसरे ग्रहों पर जाने की सोचते भी हैं तो सबसे पहले चाहे चांद हो, चाहे मंगल ग्रह हो, चाहे बुध ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, उस पर पानी तलाशने की कोशिश करते हैं वैज्ञानिक हो, चाहे कहना चाहिए सारी सरकारें उस पर जुटी हुई हैं, तो यही लेकर जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पानी हो सकता है कि नहीं हो सकता।
0: जी, यानी जीवन की संभावना से पहले पानी की संभावना,
1: पानी की संभावना। और सबसे, और देखिए, हम हमारी सभ्यताएं जितनी भी हुई हों, चाहे भारत की सभ्यता रही हो, चाहे दूसरे दजला फरात की या मेसोपोटामिया की सभ्यता, जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं दुनिया में मानी जाती हैं, जानी जाती हैं, तो वो सारी की सारी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे ही पनपी हैं और पुष्पित और पल्लवित हुई हैं। तो बड़े बड़े दुनिया के देश भी पानी के सहारे हुए हैं, समुद्रों के सहारे हुए हैं, नदियों के सहारे हुए हैं। नहरें तो आदमी ने स्वयं बनाई लेकिन प्रकृति ने उनको नदियां दी, और जिनके सहारे पानी की उपलब्धता होने के कारण ही सबसे पहले बसावट वहां हुई।
0: जी, पानी सब, किसी भी सभ्यता का विकास
1: बिल्कुल बिना पानी के संभव
0: हुए नहीं हो पाया उसमें, और जब भी उसका हम प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाए तो शायद वो सभ्यता भी खत्म हो गई।
1: यही ऐसा यही कारण
0: इतिहास
1: है।
0: इस बात
1: यही, का यही, जब जब हमारा पानी का प्रबंधन जो है बिगड़ा है, या कुप्रबंधन हमने शुरू किया, अरे हमने उसका दुरुपयोग शुरू कर दिया, तभी हमारी सभ्यताओं के साथ परिवर्तन हुआ या वो नष्ट हुई, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हुआ हो, चाहे वो मानवीय किसी भूल के कारण ऐसा हुआ हो, पर हुआ तभी है जब पानी समाप्त हुआ तो जिंदगी भी समाप्त हो गई।
0: जी, यानी कुप्रबंधन प्रकृति के संसाधनों का समस्या के शुरुआत के लिए एक मतलब एक चिंगारी के तौर पे काम,
1: बिल्कुल निदान करने के लिए वही सामाजिक प्रबंधन जो है वही सबसे बड़ी चीज बताई गई है। हर तरीके से लोगों ने सोचा है, देखा है, समझा है, लेकिन

0: उसका अनुशासनहीन प्रबंधन ही आज हमारे लिए पानी का कुप्रबंधन बन गया है और वही संकट खड़ा करता चला जा रहा है।
1: जीवन की और समाज की दो समस्याएं, अब हम थोड़ा राजेंद्र जी की बात पे आते हैं और उनके उस वक्तव्य को उठाते हैं जो कहते हैं कि जो उजाड़ और सुखाड़ की समस्या है, यानी उजाड़ वो जो बाढ़ से होता है और सुखाड़ जो सूखा, जो पानी की कमी से होता है, तो उनके पीछे की कहानी भी वो लगभग कहते हैं कि 20 साल के अगर हम उसको देखें तो जो दो समस्या है वो मूलतः पानी के कुप्रबंधन की है। तो पहले ये वक्तव्य जरा सुन लेते हैं, फिर उस पर आपका हम बोलेंगे।
2: बिल्कुल। अब इस बिगड़ते हालात में हमें संभल कर सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन करना होगा। यदि हम सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन करेंगे तो हम दोबारा पानीदार बन सकते हैं, बाढ़ सुखाड़ से बच सकते हैं। और हिंदुस्तान में इतने लंबे समय तक पानी का संकट नहीं आया, उसका एकमात्र कारण था कि पानी का प्रबंधन कभी राजा ने नहीं किया और केवल प्रजा ने भी नहीं किया और केवल महाजन ने भी नहीं किया। ये तीनों मिलके करते थे। राजा पानी के काम के लिए जमीन देता था, प्रजा पानी के काम के लिए अपना पसीना लगाती थी, मेहनत करती थी, और महाजन पानी का काम करने वालों को खाना खिलाता था, हलवा पूरी गुड़ चना ये सब वो प्रसाद के रूप में देता था। तो पानी का काम हो जाता था। सामुदायिक विकेंद्रित हमारी प्रबंधन की व्यवस्था ने बिना किसी पाइपलाइन के और बिना किसी के बहुत अच्छे से इंतजाम कर दिया था। जहाँ पानी था वहाँ पानी के लिए आदमी पहुँचता था, जहाँ पानी था वहाँ इसका इंतजाम करके वहीं पानी का उपयोग करता था।
1: तो ये आपने सुना है इसमें वो जो कह रहे हैं कि ये समस्या के पीछे हमारा को प्रबंधन है, तो
0: उनका जो मानना है वो अपने आप में बिल्कुल सही है। आज पानी की कमी हो या पानी की अधिकता हो, ये दोनों ही चीजें हमारे जीवन में जानलेवा बन रही हैं, आदमी के लिए समस्या बन गई हैं और इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि इससे जो पूरे वायुमंडल में हमारे जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन अब पानी के संकट को कई गुना ज्यादा बड़ा करके हमारे सामने ला रहा है। और जिसकी वजह से दुनिया के कई देश उजड़ने की स्थिति पे आ गए हैं, वहां के लाखों करोड़ों लोग इस समय बेघर होकर के दूसरे देशों में जाकर के शरण मांगने की कोशिश कर रहे हैं। और आज भी स्थिति आप भी देखिए, संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट आई है वो भी ये कह रही है कि अगले कुछ ही वर्षों में, यानी वो तो 2025 तक के बारे में बता रहे हैं कि हमारी दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा बिना पानी के हो जाएगा या उनको उतना पानी नसीब नहीं होगा जिससे अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें।
1: आपने क्लाइमेट चेंज का वो उठाया कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज हम जरूर कहते हैं लेकिन समस्या मूलतः पानी के साइकिल की है,
0: पानी और प्रकृति के दोहन की है जो हम बिल्कुल बेहिसाब तरीके से कर रहे हैं। आज देखिए असल में ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, ये हमारी सभ्यता के विकास के साथ ही धीरे धीरे चलने लगा। जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ती गई या हम नए क्षेत्रों में काम करने लगे, हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़ने लगा, तो हमने उसका सदुपयोग तो किया ही किया, हमने उसका दुरुपयोग भी किया और अत्यधिक दुरुपयोग किया। आप देखिए कि ये सब सारी समस्याएं पैदा हुई औद्योगिकीकरण का जो एक दौर आया 2-3 शताब्दियों पहले, तो उसने हमारी दुनिया में बहुत सारी नई चीजें पैदा की, बड़े आविष्कार हुए और इन सबसे क्या हुआ कि हम सुविधाभोगी हो गए, हम भौतिकतावादी हो गए, हमने जो हमारी पारंपरिक व्यवस्थाएं थी वो सब छिन्न भिन्न कर दी और अपने तरीके से मनमानी बात करने लगे। देखिए आप अभी सुनेंगे तो राजेंद्र जी एक जगह कहते हुए नजर आएंगे कि पहले हमारी व्यवस्था ये थी कि हम पानी के पास जाया करते थे और अपना उपयोग पूरा करते थे, यानी गांव देहात में कहीं नदी पोखर तालाब या कुआं वगैरह जो भी साधन होता था हमारा जल का, हम उसके पास जाया करते थे। हमारे विज्ञान का जैसे जैसे विकास हुआ, हमारी तकनीकी का जैसे जैसे विकास हुआ, हमने सुविधा के लिए पानी को अपने पास लाना शुरू कर दिया और नहरें बनाने शुरू कर दी, उससे पानी का बड़ा अच्छा सिंचाई का साधन भी बना। लेकिन समस्या ये भी पैदा हुई, जैसे घर घर पानी पहुंचने लगा तो हम दुरुपयोग करने लगे।
1: मतलब जो पानी के प्रति एक संवेदनशीलता थी, पानी के प्रति एक जो प्रकृति के घटक के तौर पे पूज्यता का भाव था, देवत्व का भाव था, वो कहीं गायब हो गया और मिलने वाली एक वस्तु बन के
0: ला करके हम उसका प्रबंधन बड़े ही अनुशासित तरीके से करते थे। हमें किस पानी का किस प्रकार से उपयोग करना है और ये सब चीज हम भूलते चले गए। हमें पीने के लिए पानी कितना स्वच्छ चाहिए, ये हमारी एक

0: मानसिकता बनी हुई थी और सामान्य जरूरतों के लिए हमें कैसा पानी चाहिए, तो हम उसी प्रकार से उसका प्रबंधन भी करते थे और वो हमारी मान्यताओं में ढाल दिया गया था धीरे धीरे करके हमारे पुरखों के द्वारा। तो जिसका पालन जब तक हम करते रहे तब तक निश्चित तौर पर हम पानीदार बने रहे।
1: जी। तो और जब पानीदार थे तो हम संपन्न थे, आज पानी नहीं है तो कहीं हम समस्या में आ गए। मैं फिर से लौट के आपको वहीं लाता हूं उसमें, कि हम पानीदार की बात बाद में करेंगे, कि क्लाइमेट चेंज की जो बात कर रहे थे उसके मूल में पानी है ये बात वो कह रहे हैं। साथ ही साथ वो एक बड़ी समस्या जो ग्लोबल की है उनके पीछे भी कहीं ना कहीं वो पानी की लड़ाई को देखते हैं। आज हम देशों की लड़ाई देख रहे हैं, समाजों की लड़ाई देख रहे हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: परिस्थितियों की लड़ाई दे रहे हैं। वो राजेंद्र जी तो इसके पीछे भी यही बात कहते हैं, अपन इसको एक बार सुन लेते हैं, हम
0: जी
1: श्रोताओं को
0: जी
1: सुनवाते हैं।
2: मैं कुछ डेटा आपको बताना चाहता हूँ। सोमालिया, इथोपिया, केनिया और इन सबसे पहले सीरिया जो बेपानी होके उजड़ा, कम्प्लीटली सीरियन जब अपना देश छोड़ के जर्मनी की तरफ जा रहे थे तब बगदादियों ने उनके उस पर कब्जा किया और फिर मीडिया ने उसको सिया सुन्नी लड़ाई कह के सब लोगों को भ्रमित किया। अभी जो पैलेस्टीन की लड़ाई है वो जू और इस्लामिक लड़ाई है, लोग कहते हैं कि जू और इस्लामिक लड़ रहे हैं पर वो नहीं है, वो जॉर्डन नदी की लड़ाई है। जॉर्डन नदी का सारा पानी इन्होंने अपनी एक तरह से कब्जे में ले लिया, डिफेंस मिनिस्ट्री को दे दिया और ये जो पैलेस्टीनी थे वो बेपानी हो गए। तो जूइस्ट जो हैं वो टेक्नोलॉजी में बहुत मास्टर हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जो जूइस्ट हैं उनका टेक्नोलॉजी पे बहुत कंट्रोल है, तो उन्होंने उसको यूज करके अब बेचारे प्यासे मरते कोई क्या ना करते, अपने जीवन बचाने का काम करते हैं। दुनिया अब जहाँ भी बेपानी होके उजड़ती है वो जब यूरोप के शहरों में जाती है तो उनको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बोलते हैं यूरोप के लोग, और यूएन ने जो वार के रिफ्यूजी होते हैं उनको प्रोटेक्शन दिया, पर ये क्लाइमेट के जो रिफ्यूजी हैं उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है।
1: तो जो वो अब देखिए इसमें जो आपने सुना, मैंने भी देखा उसमें, कि वो कह रहे हैं कि भाई ये समाजों की लड़ाई भी कहीं ना कहीं पानी के पीछे छुप हुई है। हालांकि वो पीछे रह जाती है, वो दिखाई नहीं देती, वो कहीं धर्म और समाज और मतों पे आ जाती है, लेकिन वास्तव में लड़ाई चाहे क्लाइमेट चेंज की हो चाहे समस्या समाजों के बंटने की हो, उसके पीछे पानी का अभाव है।
0: वो यही कहना चाहते हैं कि देशों में जो आंतरिक युद्ध हो रहे हो या एक देश के दूसरे देश के साथ युद्ध हो रहे हों, उन सबके पीछे समस्या पानी ही है। खाना और पानी जहां नहीं है तो वहां तो मरी फैलनी ही फैलनी है, लड़ाई होनी ही होनी है, चाहे वो अपने अपने घर खुद के घर की बात हो।
1: हाँ।
0: चार भाई हैं तो चार भाई लड़ेंगे, पड़ोसी से लड़ेंगे।
1: हाँ।
0: समाज में लड़ेंगे,
1: फिर वो साधनों की लड़ाई हो जाती है,
0: साधनों की लड़ाई,
1: साधन नहीं मिल रहा
0: तो ये जो प्राकृतिक संसाधन है इसके बिना तो जीवन ही नहीं है, इसलिए उसको पाने के लिए सब लोग लड़ रहे हैं
1: जी। इसीलिए आज जब हम देखते हैं कि किसान, भारत का किसान मायूस है, अब ये समस्या भी बड़ी ग्लोबल है। अब हम अपने देश की बात कर रहे हैं लेकिन ये समस्या है तो ग्लोबल, कि किसानों की जो समस्या है कहीं ना कहीं वहीं से शुरू होती है, कि पानी नहीं है, पैदावार नहीं
0: है, कि हम
1: पैदावार नहीं है तो फिर अभाव है, अभाव है तो फिर साधन नहीं है, और फिर कहीं ना कहीं इस पानी के अभाव में जो हमारी प्राकृतिक संसाधन जो भूमि है वो भी कहीं ना कहीं बीमारू होती जा रही है। इस बात की ओर भी
0: बिल्कुल बिल्कुल बीमार होती जा रही है, और पानी सूखता वहां भी जा रहा है। जब हमारी आंखों का ही पानी सूख गया और हमने वो सारे नियम कायदे कानून और अपनी मान्यताएं सब एक तरफ रख दी और उसके बिहाफ में हम काम करने लगे और अंधाधुंध पानी का दोहन करने लगे। आप आज देखिए उत्तर भारत की पानी की स्थिति कितनी बिगड़ गई है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश देश
1: जो, जो, जो कभी सूखा बाढ़ की स्थिति में नहीं आते,
0: कभी
1: था।
0: नहीं आते थे।
1: हाँ।
0: आज ये सबसे ज्यादा पानी की कमी वाला क्षेत्र बन गया है पूरे देश में हमारे में। हम सभी जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा उपयोग सिंचाई के लिए होता है, हमारा सबसे बड़ा उपयोग दूसरा नंबर का उद्योग धंधों के लिए होता है, और जिस तेजी से हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है ऊपर जा रही है, दुनिया में पांचवें नंबर पर है, हम तीसरे नंबर पर आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरीके से हम पानी के संकट से जूझते रहे तो निश्चित रूप से ही हमारी क्षमता को, हमारी उत्पादकता को, हमारे आर्थिक तंत्र को प्रभावित करेगा ये संकट, और हम पिछड़ जाएंगे, हमारे यहाँ जीवन दुभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए वैज्ञानिक लगे हुए हैं फसलों के चक्र को परिवर्तित करने में, फसलों के चक्र को सुधारने में, और उन नस्लों के बीज उपजाने

0: बनाने में या विकसित करने में लगे हुए हैं जो कम से कम पानी में उपलब्ध हो सकते हों। आपको ध्यान होगा कि हमारा जो पिछला वर्ष है 2023 वर्ष मिलेट वर्ष घोषित किया, तो उसके पीछे भी उनका एक आशय यही था कि मिलेट्स के मामले में, मोटे अनाज के मामले में सबसे बड़ी खासियत उसकी ये है कम से कम पानी में वो चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। और हमारे देश में तो मोटा अनाज खाने की ही पद्धति थी, ये तो जब से हमारे देश में विदेशी अनाज आना शुरू हुआ तो तब से हम गेहूं के ऊपर या चावल के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए। उससे पहले सारे देश में मोटा अनाज ही खाया जाता था और इतना ज्यादा पानी प्रयोग नहीं होता था,
1: उसके उत्पादन में पानी नहीं लगता था
0: बिल्कुल।
1: और दूसरी तरफ अगर उसके परिणामों को हम देखें तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जिस जब से हमने अपने खान पान को छोड़ा, अपनी जीवन शैली को छोड़ा, अपने आचार विचार को छोड़ा, व्यवहार को छोड़ा, तो हमारे स्वास्थ्य की बात इसमें आपने अपना निजी अनुभव भी बांटा था कि भाई मिलेट्स जब से खाए तब हम स्वस्थ छोड़ दिए, अस्वस्थ हो गए। तो सिर्फ जीवन चक्र ही नहीं बदला बल्कि हमारा स्वास्थ्य का चक्र भी कहीं खराब हुआ,
0: बहुत डिस्टर्ब हुआ सर। बहुत बीमारियां ऐसी बढ़ गई हैं जिनका इलाज आज तलाशने में सारी दुनिया लगी हुई है, और अब तो भारत कई प्रकार से कई रोगों की राजधानी जैसा बना हुआ है। डायबिटीज जो दुनिया में एक ऐसी बीमारी है जिसके कंट्रोल करना आपको जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आप अच्छा जीवन तो कभी जी ही नहीं सकते अगर डायबिटिक हैं तो, उसके साथ तमाम बीमारियां लगी रहती हैं और वो ऐसी स्थिति होती है शरीर की, आदमी की क्षमता को भी बहुत कम कर देती है, ना के बराबर रह जाती है डायबिटीज का रोगी जो है, और उसको हार्ट डिजीज भी ज्यादा होते हैं। तो भारत में ये समस्या बहुत तेजी से पनप रही है। बात वहीं आ जाती है फिर लौट फिर के कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अनुशासित तरीके से और जरूरत के मुताबिक ही करें, उसका दुरुपयोग ना करें, उसका जो है हम नियम और कायदे कानून का पालन करें सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी और देखा जाए तो कानूनी रूप से भी।
1: जी, तो इसमें कहीं ना कहीं जब हम समाधान की ओर बढ़ते हैं, समस्याएं हमारे अपने विचारों से, अपने व्यवहार से और अपने को प्रबंधन से पैदा हुई, तो जब हम प्रबंधन की ओर जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर से हमें प्रकृति के जो ये पंच महाभूत है उसमें पानी है, या पानी की बात आज हम कर रहे संरक्षण की, तो कहीं फिर से उसमें देवत्व को देखना पड़ेगा, उसके पूज्य भाव को हमें फिर से संरक्षित करना पड़ेगा। तभी तो कहीं शुरुआत होगी, जब संवेदनशीलता हम अपने से उसको महत्वपूर्ण मानेंगे तो संवेदनशीलता भी तभी विकसित होगी। इस बात की ओर भी वो इंगित करते हैं कि इसका प्रबंधन कहीं ना कहीं सामूहिक हो, प्रकृति के घटक के तौर पे हो, उसमें पूज्य का भाव।
0: हमारे पुराने समय में ऋषि मनीषियों ने, जिन लोगों ने ये सब भाव हमें सिखाए थे या हमारे पूर्वजों ने, तो उन्होंने हमारे जीवन में सहज रूप में ढालने की कोशिश की थी, क्योंकि तब जनता में शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं था। लेकिन अफसोस ये है कि जैसे जैसे शिक्षित हम कहलाने लगे वैसे वैसे हम शिक्षा के जो मूल तत्व हैं उनको भूलने लगे। हमें जिन बातों का अनुपालन करना चाहिए था वो बात हम भूल गए।
1: कभी पानी का स्तर यहाँ नीचे भी जाएगा, ये तो नहरों का, नदियों का प्रदेश है।
0: आज देखिए हमें बराबर ये संकट देखने को मिल रहा है। दुनिया हमारे यहाँ के कहना चाहिए 12 से 15% जो ब्लॉक हैं हिंदुस्तान के
1: जी,
0: वो अब डार्क जोन की श्रेणी में घोषित हो चुके हैं
1: जी। बल्कि आप अपने ब्रज की स्थिति भी जो है बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, ब्रज तो, के भी अगर हम जैसे मथुरा जिले की बात करें उसमें 10 ब्लॉक हैं, तो 10 में से आधे से ज्यादा ब्लॉक डार्क जोन में और गंभीरता वाले क्रिटिकल उसमें आ चुके हैं।
0: बिल्कुल आ चुके
1: और
0: बिल्कुल
1: आज आ चुके। जो हम कभी 100 फीट से ऊपर पानी देखते थे आज वो 200 फीट पे चला गया।
0: आज भी हम ये देख रहे हैं कि पानी को हम सहेज नहीं रहे हैं, चाहे हम भारत के स्तर पर देखें चाहे हम बिल्कुल स्थानीय स्तर पर देखें, सरकारें इस बात पे अब चेतने लगी हैं और चेताने लगी हैं लोगों को। मैं आपको बताऊं, 2-3 महीने पहले ही आगरा मंडल के कमिश्नर ने मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण में एक बैठक ली, और बैठक में उन्होंने बाकी सारी चीजें तो अपने तरीके से समझाई, सरकार क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है और जनता के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, पर उन्होंने कहा कम से कम जो बहुमंजिली इमारतें हैं इनमें तो जल संरक्षण का नियम आप लागू कीजिए, कायदे से बना हुआ है।
1: जो बड़ी इमारतें बन रही हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे
0: जो भी
1: बन रूफ एरिया बड़ा है, कम
0: तो सरकारी हो गैर सरकारी हो, और उस पर अभी मैं पिछले हफ्ते का बता रहा हूं कि मथुरा वृंदावन प्रकाश विकास प्राधिकरण ने ऐसे 194 भवन स्वामियों की जो सिक्योरिटी मनी थी 2.5 करोड़ रुपया करीबन वो उन्होंने जब्त कर लिए है ये कार्रवाई करते हुए, और उन्होंने
1: जिन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग नहीं की
0: है। और उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ, मैं खुद

0: एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहता हूं, वहां इस बात पे कोई चहल पहल नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई समझ नहीं है। लोग वहां के इस बात को उठाते रहते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन फिर भी बिल्डर्स लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते और सारा पानी बह जाता है। आज हमारे यहाँ समस्या तो यही हो गई है, शहरी, मैंने बताया ना, एक औद्योगिकरण और दूसरा शहरीकरण जो इतनी तेजी से हुआ है, पूरी दुनिया में ही हुआ है, हमारे यहाँ भी हो रहा है, और उसने सारे कंक्रीट के जंगल पैदा कर दिए हैं। सड़कों पे तो पानी दो पैसे का नहीं बच सकता है कहीं पर भी, और ये सारा पानी नदी और नालों से बह करके और समुद्र में चला जाता है, वेस्ट हो जाता है।
1: तो जब पानी हमारे पास होता है तब प्रबंधन नहीं होता, और जब नहीं होता तो फिर वो प्रबंधन की तरफ जाता है, ये अभाव हम देखते हैं।
0: और जो होता भी है हम उस पर ध्यान नहीं देते, कि हम इसको किस तरीके से खर्च करें, कम कम किससे खर्च करें। उनको तो दिखता ही है कि हमने एक बटन दबाया।
1: टेक्नोलॉजी ने भी इस समस्या को थोड़ा सा गंभीर बनाया, इस बात की ओर भी वो करते हैं सारा, थोड़ा सुन लेते हैं उनके इस वक्तव्य को।
2: आज भारत के जो शहर है उन्हें हमारी सरकारें 100-100 किलोमीटर दूर से लाके भी पानी पिलाती है। आगरा में यदि पानी का संकट है तो यमुना को भुला दिया, गंगा का पानी ले आएंगे। आगरा के लोगों की पूर्ति नहीं होगी तो चंबल का ले आएंगे। ये जो दूसरों का पानी छीन के लाने की आदत है हमारी सरकारों की, इसने गांव और शहर को बांटा है। गांव की समस्याएं बिल्कुल अलग हैं इस वक्त, और शहर की समस्याएं बिल्कुल अलग हैं। इन अलग अलग समस्याओं का समाधान एक ही है। ये जो पानी का संकट है ये वैश्विक है, ग्लोबल है, पर इसका सॉल्यूशन लोकल है। और वो लोकल सॉल्यूशन ये है कि यदि गांव में एक गांव है, उसके क्षेत्र में बरसने वाले पानी से वहां का पशुपालन, खेती और वहां के लोगों की ज़रूरत तीनों पूरी हो सकती है, बशर्ते कि वहां का समाज अपने पानी का सामुदायिक विकेंद्रित कर और जल के उपयोग की दक्षता समझे। जब भारत के गाँव के लोग अपने बारिश के पानी से अपने फसल चक्र को जोड़ देंगे तो जितना अभी 84% पानी खेती में यूज होता है, फिर 40% में भी उतनी पैदावार हो सकती है।
1: यहाँ जैसे वो एक कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई जो जब से टेक्नोलॉजी आई, आपने जैसे शुरुआत में कहा था कि हम पानी के पास जाते थे, आज पानी हमारे पास चल के आ रहा है, तो इसने भी कहीं ना कहीं चीजों को वो किया है। साथ ही साथ अब जैसे समाधान की ओर हम चलते हैं उसमें, तो वो अपने समाधान में जो उनका जहां भी वक्तव्य देते हैं, शायद वो ग्लोबल समस्या का समाधान लोकल और एक सामूहिक विकेंद्रीकृत व्यवस्था पानी के प्रबंधन की हो, इस पर वो इशारा करते हैं।
0: हाँ, ये इस पर इशारा इसलिए करते हैं कि उनके 50 साल के जीवन का ये अनुभव है, और उन्होंने 14,800 जल संधारण के संस्थाएं खड़ी की हैं, ये नदी, जोहड़, तालाब, ये सब बनाए हैं, तो केवल इसी बात पर बनाए हैं, सामूहिक सहयोग के साथ और सामूहिक समझ जो है उसके साथ उन्होंने ये काम शुरू किया है। और इससे जहां जहां जरूरत थी पानी की, जितनी उस तरीके से उन्होंने पानी को वहां पर जमा किया है, और वाटर बॉडीज को उन्होंने दोबारा पानी पैदादार बनाया है। कई नदियों को उन्होंने, जो बिल्कुल रिकॉर्ड तक में राजस्व के हमारे यहाँ नष्ट हो चुकी थी, दोबारा पानीदार पैदा किया है। तो उनका कहना यह है कि जो नदी आपको ऊपर दिख रही है, पहले इसके नीचे की नदी को पुलवित करने की बात करो आप, उसमें अगर पानी होगा तो ये नदी ऊपर कभी नहीं मरेगी जो आपको बहती दिख रही है, आपको पानी दे रही है।
1: उनकी इस बात को सुन लेते हैं एक बार।
2: हाँ। जब एक हाथ से वर्षा जल का संरक्षण करें और दूसरे हाथ से जल के उपयोग की दक्षता बढ़ाएं और जल को अनुशासित होकर उपयोग करें, जल के साथ अपना फसल चक्र जोड़ दें, तो फसलें फिर फेल नहीं होंगी। अभी किसान की फसलें फेल भी हो जाती है जब सूखा पड़ता है, तो हमारे फसल चक्र को वर्षा चक्र के साथ जोड़ना ये हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसके लिए हमें नॉर्थ इंडिया में भी और अपने भारत देश में भी और दुनिया में भी जल साक्षरता के एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। जहाँ जहाँ ये जल साक्षरता आंदोलन सफल हुए, वहाँ वहाँ कुछ अच्छा हुआ है, वहाँ के लोगों ने अपने पानी का इंतजाम कर लिया। इसलिए मैं जो आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ वो केवल कैलकुलेशन पर बेस्ड नहीं है, वो गणनाओं वाला आर्ग्यूमेंट नहीं है। वो जो आर्ग्यूमेंट है वो टाइम टेस्टेड, जहाँ जहाँ भारत में समुदायों ने अपने पानी को बचाने का काम किया वो पानीदार बन गए।
1: तो ये जो बात हमने सुनी, अब छोटी छोटी बातें, अब उनके पास तो एक विशाल भंडार है विचारों का भी, अनुभव का भी, और काफी कुछ बातें हम श्रोताओं तक लेके आए। तो अब

0: ये समस्या बड़ी है, सामूहिक उसके बिना नहीं हो सकती। जब तक हम मिलके नहीं सोचेंगे, समाधान कम से कम मिलके नहीं करेंगे, तो चीजों का जो समस्या है वो यूं की तो बनी रहेगी। अब जरूरतें भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है, समाज भी है, और जो है हम उसको आमूलचूल तो परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन एक चिंगारी के तौर पे जो शुरुआत है, कहीं ना कहीं एक सामूहिक प्रयास से निकलती हुई नजर आ रही है आपको?
1: नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, कई चीजें हमें इसमें करनी पड़ेंगी। जो इन कारणों में जो पानी के संकट के हैं, इसमें सबसे बड़ा एक रोल हमारे यहाँ पानी का, जो जिस तरीके से निजीकरण बढ़ता चला जा रहा
0: जी
1: है।
0: जी कि सबमर्सिबल लगा लो, पानी खींच लो।
1: हाँ, चाहे हम निजी तौर पर ये कर लें, चाहे इसका व्यावसायिक उपयोग करने वाले ऐसा करें, दोनों ही स्थितियों में उसमें पानी का बहुत दुरुपयोग होता है और वो लोग बेहिसाब करते हैं, क्योंकि उन्हें तो दिखता है ना, ये 1 रुपए की पानी की बोतल की कीमत नहीं है
0: जी
1: और
0: जी
1: उनको 20 रुपया 25 रुपया मिल रहा है, होटलों में वो 150 रुपए तक की हो सकती है। तो ये जो स्थिति है, ऐसे ही कई कारण ऐसे हैं जिनसे हमें निपटना पड़ेगा। हमें फसलों के चक्र में बदलाव लाना पड़ेगा, हमें फसलों की नस्ल में बदलाव लाना पड़ेगा, बीज इस प्रकार के होने चाहिए, हमारी सारी प्रक्रिया इस तरीके से होनी चाहिए कि जो कम से कम पानी का उपयोग करके और ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता दे सके। तो जब तक हम इन चीजों को ध्यान नहीं रखेंगे, इनका नियमन नहीं करेंगे, इन पर बढ़ावा नहीं देंगे और दुरुपयोग पर रोक नहीं लगाएंगे, तब तक हम पानी के संकट से उभरना तो दूर, बच भी नहीं सकते और ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता जाएगा।
0: जी। तो श्रोताओं, ये बातचीत जो हम कर रहे थे विजय कुमार विद्यार्थी जी से, बात दरअसल राजेंद्र सिंह जो हमारे समाज के, देश के जल पुरुष के नाम से जाने गए, उनका बड़ा अनुभव है और बड़े लंबे, जैसा विद्यार्थी जी ने कहा, लगभग 40-50 साल का अनुभव। उनको मैग्सेसे पुरस्कार भी इसके लिए मिला।
1: हाँ, वाटर
0: तो
1: प्राइस
0: हाँ,
1: पुरस्कार
0: तो
1: मिलता है।
0: अब उस पर एक मंथन और चिंतन की जरूरत है, एक समाज में एक ऐसी सामूहिक सोच विकसित करने की जरूरत है जिसमें हम कम से कम सामूहिक संसाधन, इसको प्रकृति को मान करके, सामूहिक ही दोहन करें और सामूहिक ही उसका संरक्षण करें, तो कहीं एक बेहतर समाज और एक बेहतर परिस्थिति हम अपने और अपने देश और समाज के लिए बना सकते हैं। विद्यार्थी जी, आप आए और जानकारी दी हमारे श्रोताओं के लिए, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हिंदी वार्ता क्रम में आप सुन रहे थे ये विशेष बातचीत बिन पानी सब सून। वार्ताकार थे विजय कुमार आर्य और आपसे बातचीत कर रहे थे ओपी सिंह।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 10:30 होने को है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
1: ऐसे क्या देख रहे हो?
2: सपना, बहुत दिनों बाद तुम्हें।
1: बहुत दिनों बाद क्या?
2: जोर से कहो।
1: I love you, I love you, I love you.

संगीत था संजीव दर्शन का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म अंगरक्षक से।

पेश है कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म संघर्ष से। गीत को आवाज दे रहे हैं सोनू निगम, शब्द रचना समीर की, संगीत जतिन ललित का।

संघर्ष फिल्म का ये गीत आपने सुना सोनू निगम की आवाज़ में। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। उदित नारायण, सुदेश भोसले, राकेश पंडित और साथियों की आवाज़ में फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ से।

0: उदित नारायण, सुदेश भोसले, राकेश पंडित और साथियों की आवाज़ में आपने सुना बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा था समीर ने, संगीत था विजू शाह का। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त हुआ। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दिन के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज के कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं संजय सारस्वत।
1: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो,
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: टेक चंद अग्रवाल बोल रहा हूँ, प्रासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: अग्रवाल साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं,
1: बहुत बढ़िया है सर। हम
0: क्या चल रहा है आजकल,
1: बस सर घर के काम में व्यस्त हैं सर।
0: और रेडियो के कार्यक्रम भी सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल सर, उसके साथ में यही तो एक मनोरंजन का साधन है हमारा।
0: जी,
1: कार्यक्रम भी सुनते जाते हैं और अपना काम भी करते जाते हैं।
0: आजकल मौसम का क्या हाल चाल है आपके यहाँ?
1: मौसम बहुत बढ़िया है सर हमारे यहाँ का।
0: अच्छा,
1: बढ़िया, लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक के हो रही है लेकिन लगातार हो रही है। जी
0: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आज
1: जी
0: कार्यक्रम में क्या फरमाइश रहने वाली है?
1: पारसमणि के गाना सुनवा दीजिए सर, वो जब याद आए बहुत याद आए।
0: बिल्कुल सुनवाते हैं अग्रवाल साहब, आपकी पसंद का गाना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर।
2: वो जब याद आए

0: हेलो।
1: हाँ भैया जी, योगेश जांगड़े पे मैं तरह छत्तीसगढ़ से। शुक्रिया।
0: स्वागत है योगेश भाई कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है भैया, अच्छे हैं।
0: मौसम कुछ बदला?
1: बारिश तो बहुत हुआ है भैया
0: अच्छा,
1: जी।
0: तो अब तो सुकून होगा, गर्मी से कुछ राहत होगी।
1: हाँ, गर्मी से कुछ राहत हुआ है।
0: जी, खेती के लिए कैसी है ये बारिश?
1: ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया था भैया
0: अच्छा, ज़्यादा हो
1: जी।
0: गया।
1: जी
0: अरे चलिए, ये तो कुदरत है,
1: हाँ जी
0: कब
1: जी
0: क्या कर दे कुछ कह नहीं सकते।
1: जी जी
0: कार्यक्रम आप सुन रहे हैं हमारा लगातार?
1: जी जी बिल्कुल। मोबाइल ऐप में आ जाने से अब तो खेत में भी सुनते हैं भैया जी।
0: हाँ, बड़ा आराम हो गया।
1: फिल्म
0: आज क्या फरमाइश रहेगी भाई साहब?
1: अंदाज से सुनवा देंगे, आएगा मजा अब बरसात का
0: बिल्कुल, सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।
1: जी।
0: शुक्रिया आपका बहुत बहुत।
1: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रबान जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: ठीक है सर, मैं भी अच्छा हूँ, आप भी अच्छे हैं। ड्यूटी पीरियड में हूँ सर, यहाँ बादल किया है, जंगली नर्सरी के बीच में बैठा हूँ सर, और एकदम हवा ठंडा ठंडा चल रहा है, और चिड़िया लोगों का आवाज भी बहुत मधुर आवाज आ रहा है सर। जी
0: इंद्रबान
1: सर,
0: जी, आप
1: जी
0: करते क्या हैं?
1: मैं एसईसीएल में सर्विस करता हूँ सर, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड में सर्विस करता हूँ। काम निपटाने के बाद में आता हूँ सर, और कई केंद्रों में फोन करता हूँ, रिकॉर्डिंग में, ईमेल में, प्रसारण भी सुनता हूँ, लाइव ईमेल में भी फोनिंग करके सब में जुड़ता हूँ सर।
0: बहुत अच्छी बात है सर।
1: जी,
0: आज क्या फरमाइश रहेगी कार्यक्रम में, बताइए।
1: आज फिल्म का नाम है सर धरती, और गीत की बोले ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है। गायिका लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी। पहले गीत आपको, केंद्र निर्देशक साहब को, पूरे भारत श्रोता को, हेलो एक्टर रेडी फ्रेंड ग्रुप में जुड़े श्रोताओं को, आकाशवाणी मथुरा में जुड़े सभी उद्घोषक भाई बहनों को, स्टाफ कर्मचारियों को, सभी लोगों को डिडेट करना सर।
0: सुनवाते हैं इंद्रभान जी आपकी फरमाइश का गाना।
1: जी
0: बहुत
1: सर,
0: बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो सर, राधे राधे।
0: राधे राधे।
1: मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र नेत्रपाल जी, नाम राधा विजयी राया, आपसे बात कर रहा हूँ जी।
0: जी नेत्रपाल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: सर एक आपका स्वास्थ्य स्वास्थ्य कैसा है सर?
0: बहुत बढ़िया है सब लोग। आप
1: सर
0: बताइए आप कैसे हैं।
1: सर बिल्कुल सही हूँ, कोई बात नहीं। अब तो जो है टाइम मंडे का है, हो गया 77 का।
0: नहीं, ऐसा क्यों बोलते हैं आप?
1: और सर ज्यादा जी अब क्या करेंगे हम?
0: ये तो प्रभु के हाथ में है, जीना
1: नहीं
0: मरना।
1: वो तो उनके हाथ में है ही, पर हम अब क्या करेंगे जज जी करके?
0: बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, अपने छोटे लोगों को अपने अनुभव दीजिए।
1: बिल्कुल दे रहा हूँ ना, बिल्कुल रिटायर हूँ,
0: हाँ
1: कृषि विभाग से सारे चीज बताता रहता हूँ।
0: अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। बड़ों का अनुभव ही तो जिंदगी में काम आता है।
1: वो तो आप सही कह रहे हैं।
0: आज क्या पसंद रहेगी नेत्रपाल
1: एक
0: जी?
1: फिल्म है सर, जमुना किनारे,
0: जी,
1: सावन की मल्हार है, उसमें बढ़िया।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए।
1: सर राधे राधे।
0: राधे राधे।

0: हेलो,
1: परम माननीय संजय सारसा साहब, सादर सा प्रेम प्यार है, नमस्कार।
0: नमस्कार सर, कौन बोल रहे हैं?
1: मानवर में आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। मानवर, आप कैसे हैं? आपकी टीम कैसी है?
0: बहुत अच्छे हैं सभी लोग सर, आप भी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे।
1: निसंदेह मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। रेडियो सुनना मेरा शौक है और गीत संगीत से जुड़ा रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। और जो गीत संगीत में सुनते हुए मस्त रहता है वो सदैव स्वस्थ रहता है।
0: बिल्कुल सही कहा सर, अब तो मौसम में भी थोड़ी राहत आने लगी है।
1: जी, तापमान काफी कम हो गया है और मौसम भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। रिमझिम रिमझिम की फुहार पड़ती रहती है, कभी कभी टिप टिप बारिश भी होती है और ये वर्षा का मौसम लग रहा कि हाँ, अब अपने पूरी तरह से आच्छादित होने वाला है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आज क्या फरमाइश रहेगी प्रजापति जी?
1: सर, वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है, अषाढ़ का महीना है, जहाँ देखिए तहाँ पानी ही पानी है और कहीं पानी की आवश्यकता है, कहीं पानी से समस्याएं भी हैं। तो
0: जी
1: ऐसे में एक बहुत ही प्यारा गीत याद आ रहा है, पानी रे पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उसी जैसा। मुकेश साहब के साथ लता जी ने गीत गाया है फिल्म शोर के लिए।
0: बिल्कुल, सुनवाते हैं सर आपकी पसंद का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए।
1: जी, हृदय से धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। सादर नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की फोन कॉल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति थी संजय सारस्वत की।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। अब सुनिए फिल्म संगीत के कंपेयर्ड कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत को।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। श्रोताओं, आज हम आपसे बात करेंगे रिश्तों के बारे में। इस धरती पर हमारे जन्म के साथ ही रिश्ते भी जन्म लेते हैं। माँ, पिता, भाई, बहन, दादी, नानी, बुआ, मौसी, इन सभी से हम जन्मजात रिश्तों के बंधन में बंधे होते हैं। पर जीवन की दहलीज पार करते करते हम खुद में ही इतना उलझ जाते हैं कि इन रिश्तों से अपना संबंध भी बिसरा बैठते हैं। पर जीवन के गमों से जब हम दो चार होते हैं, तब यही रिश्ते हमें सहारा देने चले आते हैं बिना बुलाए। हाँ,

कई वाक्यों में या कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उन्हें कभी कभी बहुत बड़ा गम या दुख इन्हीं रिश्तों की वजह से भी मिलता है, लेकिन साथियों अपनों के रिश्तों की वजह से हमें कभी गम नहीं होता। अगर इस बात की गांठ आज हम बांध लेंगे तो रिश्ते कभी हमें दुखी नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि इन रिश्तों को लेकर हम परेशान भी हो जाते हैं, वो भी बस इसलिए कि या तो हम उन रिश्तों की कद्र नहीं कर रहे होते हैं या फिर वो हमारी कद्र नहीं करते। सिंपल बात अगर हम कहें तो या तो उन्हें हमारी बात नहीं जचती या फिर हमें उनकी। नतीजा हम अपना हाथ अपनों के रिश्तों से छुटाने लगते हैं, ये जानते हुए भी कि हाथ छूटे

आने लगते हैं, ये जानते हुए भी कि हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं टूटा करते। पिंजर फिल्म में जगजीत सिंह के गाए और गुलजार के लिखे कुछ इस गीत की तरह।

साथियों, रिश्तों की जिस डोर में आप और हम बंधे हुए हैं, वो डोर ही है जो जीवन की एक खूबसूरत किताब तक हमें पहुंचाती है। इसके हर पन्ने पर कभी मुस्कुराहट लिखी होती है तो कभी यादों की नमी। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ कुछ ही पलों के लिए आते हैं, लेकिन उनकी यादें ता उम्र हमारे साथ चलती हैं, जिन्हें हम चाहकर भी नहीं मिटा पाते। और जब उन बिछड़े रिश्तों की बातें याद आती हैं और उन यादों की करवट लेती हैं, तो उन बीते हुए पलों के शब्द गीत बनकर दिल की तिजोरी में लता मंगेशकर और सोनू निगम के गाए वीर ज़ारा फिल्म के कुछ इस गीत की तरह गुनगुनाते हैं।

0: साथियों, आज हम कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में बात कर रहे हैं रिश्तों के बारे में। और बात जब रिश्तों की होती है तो हर किसी के जीवन में रिश्तों की किताब के कुछ पन्ने ऐसे भी होते हैं जिनके नाम नहीं होते, वो बस एक मीठा सा एहसास बनकर दिल की किताब में सदा के लिए गढ़ जाते हैं, लिख जाते हैं। फिर उन खास या फिर कहें परम खास रिश्तों से कितनी भी दूरियां बढ़ा ली जाए, पर उन अहम रिश्तों की यादें कभी भी धुंधली नहीं पड़ती। और फिर जीवन की एक आखिरी दहलीज पार करते करते उन रिश्तों से हमारा शिकवा भी मिट सा जाता है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में गाए आंधी फिल्म की कुछ इस गीत की तरह।
1: बरसों बाद निकली हूं, ऐसा लगता है।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

और हमेशा उन रिश्तों को सहज कर रखिए, संभाल कर रखिए। पर हाँ, अगर वहीं हमारे साथ कुछ रुष्ट व्यवहार वाले रिश्ते भी बन जाएं, तो उन्हें माफ करके आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप कुंठित नहीं होंगे, उलझेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, आप भी आगे बढ़ते जाएंगे जीवन के सफर पर।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

साथियों, जिंदगी में आए या बने कोई भी रिश्ते कभी बेवजह नहीं होते। कुछ रिश्ते साथ देने के लिए आते हैं और कुछ सबक। तो इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत यहीं पर संपन्न होता है। हमें दीजिए अनुमति, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और विचारों को खिलने दीजिए।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत के कंपेयर्ड कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत को। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अपराह्न के 12 बजे हैं। अब सुनिए फिल्म कव्वाली।

आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम की ये पहली कव्वाली, लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की आवाजों में। फिल्म है मुगले आजम, स्वर है शाकिल बदायूनी के और संगीत है नसुद्दीन का।

लता मंगेशकर और शमशाद बेगम को अभी आप सुन रहे थे फिल्म मुगले आजम में। इस कव्वाली को लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीत दिया था नौशाद ने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली कव्वाली मोहम्मद रफी और मन्ना डे की आवाजों में। फिल्म है बरसात की रात, कव्वाली लिखी है शहीर ने और संगीत है रोशन का।

मोहम्मद रफी और मन्ना डे की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे बरसात की रात फिल्म की ये कव्वाली। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम की अगली कव्वाली। एआर रहमान और जावेद अली व साथियों की आवाजों में फिल्म है रॉक स्टार। इस कव्वाली को लिखा है चिंतन ने और संगीत दिया है एआर रहमान ने।

एआर रहमान और जावेद अली वसाथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुनी परवा के स्टार फिल्म की कव्वाली। और जब सुनिए कार्यक्रम की अगली कव्वाली सोनू निगम और अल्ताब शबरी वसाथियों की आवाज़ों में, मैं हूं ना फिल्म से, लिखी है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अल्ताफ शब्बीर और सोनू निगम व साथियों की आवाजों में गाए फिल्म मैं हूं ना की कव्वाली के इसी के साथ ही फिल्म संगीत फिल्मी कव्वाली का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म कव्वाली FM 102.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अपराह्न के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम ब्रज लोक गीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कलाकार जगदीश ब्रजवासी की आवाज में गाए कुछ लोक गीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पुलिस?
4: मिस सीमा
3: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों? लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
3: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा।
6: RBI कहता है।

0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: गाइस लेट्स डू अ क्विक कॉल।
2: अब बॉस को कैसे बताऊं मेरी फ्लाइट का टाइम होने वाला है।
3: तू बॉस के साथ कॉल ले। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना अब इजी है क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट एक्सेस और हैसल फ्री कैब्स एंड बस सर्विस भी, तो फिकर नॉट।
4: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
5: फ्लाइट पकड़ना रेस नहीं होनी चाहिए।
6: अब बिजनेस ट्रिप हो या वेकेशन, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना इजी है। यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट एक्सेस और 24/7 कैब फैसिलिटी के साथ टाइम पे पहुंचना गारंटीड।
4: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
7: विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान, घर घर पर दस्तक देकर होगी सभी रोगों की रोकथाम।
8: उत्तर प्रदेश सरकार ने ठाना है संक्रामक रोगों को फैलने से बचाना है।
7: ध्यान रहे, बुखार में देरी पड़ेगी भारी, इसलिए बुखार होने की स्थिति पर निकटतम सरकारी अस्पताल जाएं तथा उचित चिकित्सक की सुविधा पाएं।
8: 1 से 30 अप्रैल तक चलेगा ये अभियान। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800180 5145 पर कॉल करें।
9: चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
10: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोक गीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जगदीश ब्रजवासी की आवाज में गाए कुछ ब्रज लोक गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे जगदीश ब्रजवासी की आवाज में कार्यक्रम ब्रज लोक गीत। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दिन की 1 बजने को आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के 3रे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
1: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान

0: चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने ले मिन हुन ने फूकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। शेख हमद ने क्षेत्रीय परंपरा को तोड़ते हुए 2013 में स्वेच्छा से अपने पुत्र को सत्ता सौंपने से पहले 18 वर्षों तक कतर पर शासन किया। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हानयू और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोवक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रिएला ड्राबोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अपराह्न की 1:05 हुए हैं। आइए हम आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष सभा और अगली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में। अब से थोड़ी देर में यानी 1:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इस मास का गीत। स्वर होंगे आंशुना सक्सेना और नरेश मल्होत्रा की, रचना ब्रह्मा जी नंद की और संगीत नरेश मल्होत्रा का होगा। 1:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम झलकी, शीर्षक होगा तब और अब। लेखक होंगी डॉक्टर अचला नागर, प्रस्तुति सतीश माथुर की होगी। श्रोताओं की बात फोन कॉल के साथ। प्रस्तुति होगी ओपी सिंह और संजय सारस्वत की। इस कार्यक्रम का समय होगा दिन में 1:30 पर। 1:45 का समय होगा फिल्म संगीत का। दिन में 2 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और हिंदी में समाचार का समय होगा दिन में 2:15 पर, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। दिन में 2:30 का समय रहेगा सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का। हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होगी आज शाम 5:30 पर युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी के साथ। इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय सकारात्मक शांति और मानवीय एकता दिवस। शाम 6:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा बरसात के मौसम में डेयरी और पशुधन प्रबंधन, साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड लाभ और उपयोग विषय पर चर्चा होगी। ब्रज लोक गीतों का कार्यक्रम मन भावन आप इस कार्यक्रम में सुन सकेंगे। आज शाम 6:45 का समय होगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम संध्या वंदन का। शाम 7:05 पर आप सुनेंगे ब्रज साहित्य कार्यक्रम, विषय होगा उद्धव शतक 100 पाठ। 7:18 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। फरमाशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहाने प्रसारित होगा आज शाम 7:31 पर। रात्रि 8

आज आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप सुन सकेंगे आज रात्रि 8:30 पर। 8:45 का समय होगा हिंदी समाचारों का और रात्रि 9:00 आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। रात्रि 9:15 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुहाने तराने। प्रादेशिक संगीत आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 का समय होगा अंग्रेजी समाचारों का, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

रात्रि 11:10 का समय होगा हमारी दूसरी सभा के समापन का। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। श्रोता, अब समय है कार्यक्रम संबंधी सूचना का। श्रोताओं, वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हैलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार 13 जुलाई को अपराह्न 1:15 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधी रोग कारण लक्षण एवं निदान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुनीत। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565253015 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412255575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में त्वचा संबंधी रोग कारण लक्षण एवं निदान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधित रोग कारण लक्षण एवं निदान। श्रोताओं, यदि आप कील मुहासे ब्लैक हेड्स आंखों के नीचे काले घेरे दाद खाज हर्पिज फोड़े फुंसी मत्से एलर्जी फंगल संक्रमण सोरायसिस रिंकल्स हेयर फॉल आदि समस्याओं के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर गुनीत जो कि वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार 13 जुलाई 2026 और समय अपराह्न 1:15 से। सूचना समाप्त हुई। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संबंधी सूचना। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब आपको सुनवाते हैं इस मास का गीत। स्वर हैं आंशवना सक्सेना और नरेश मल्होत्रा की। गीत रचना है ब्रह्मा जी नंजी की। संगीत नरेश मल्होत्रा का है।

0: गाइस लेट्स डू अ क्विक कॉल।
1: अब बॉस को कैसे बताऊं मेरी फ्लाइट का टाइम होने वाला है।
2: तू बॉस के साथ कॉल ले। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना अब इजी है क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट एक्सेस और हैसल फ्री कैब्स एंड बस सर्विस भी, तो फिकर नॉट।
3: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: फ्लाइट पकड़ना रेस नहीं होनी चाहिए।
5: अब बिजनेस ट्रिप हो या वेकेशन, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना इजी है। यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट एक्सेस और 24/7 कैब फैसिलिटी के साथ टाइम पे पहुंचना गारंटीड।
3: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: गाइस लेट्स डू अ क्विक कॉल।
1: अब बॉस को कैसे बताऊं मेरी फ्लाइट का टाइम होने वाला है।
2: तू बॉस के साथ कॉल ले। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना अब इजी है क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट एक्सेस और हैसल फ्री कैब्स एंड बस सर्विस भी, तो फिकर नॉट।
3: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इस मास का गीत, स्वर थे अंशना सक्सेना और नलेश मल्होत्रा के। एफ एम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम झलकी। शीर्षक है तब और अब। लेखक हैं डॉक्टर अचला नागर। प्रस्तुति सतीश माथुर की है।
7: प्रस्तुत है अचला नागर की लिखी झलकी तब और अब। प्रस्तुति सतीश माथुर की है।
8: सुनो।
9: सुनो। क्या?
8: कुछ कहो ना।
9: उफ़ क्या कहूँ।
8: कुछ भी।
9: अच्छा सुनो।
8: सुनाओ।
9: आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो।
8: ओफ वही बात, सिर्फ वही बात।
9: वही क्या?
8: अरे वही भौतिक शरीर, भौतिक संसार की बातें।
9: भौतिकी? डू यू मीन फिजिक्स? फिजिक्स?
8: ओह माय गुडनेस, फिजिक्स की बात नहीं कर रही मैं।
9: हाँ।
8: मैं बात कर रही हूँ इस फिजिकल बॉडी, इस फिजिकल वर्ल्ड की बात।
9: ओह आई सी।
8: अपने स्टैंडर्ड से ऊपर क्या कभी नहीं उठ सकोगी तुम जैकी?
9: कैसे उठ सकता हूँ डार्लिंग, अरे हाई जंप में भी तो 8.5 इंच से ऊपर कभी नहीं उठ सका। ना ना ना, जाओ नहीं, जाओ नहीं, कहाँ जा रही हो मोना? ऐसे बात बात पर उठोगी तो। हाँ आप जरा समझा कर कहो ना, क्या बात थी?
8: जैकी मैं चाहती हूँ, मैं आई मीन टू से।
9: बोलो बोलो बोलो ना।
8: मैं

0: आज ऐसी बातें करना चाहती हूँ जिससे शरीर नहीं मन भीग सके,
1: भीग
0: मन।
1: सके भीग सके। ओह माय गुडनेस, व्हाट आर यू सेइंग? इतनी ठंडी में तुम भीगने की बात करती
0: ओ
1: हो?
0: यू सिली चैप, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते जयकिशन?
1: हाँ, समझने की।
0: आखिर इंटर तक तो हिंदी लिटरेचर तुमने भी पढ़ा था ना,
1: हाँ,
0: इतनी सी बात भी नहीं समझते? भीगने से मेरा मतलब मन में एक तरह की संतुष्टि, आई मीन टू से एक तरह का सेटिस्फेक्शन फील होने से है।
1: आई सी।
0: हाँ, मैं चाहती हूँ कि आज की बातें ऐसी हों जिनसे हमें थोड़ा मेंटल फूड मिले, शांति के लिए बहुत जरूरी है।
1: ओके मुना, मैं आज ही शांति को मेंटल फूड का तुम्हारा फार्मूला बता दूंगा। वो पूछती भी रहती है कि
0: ओ
1: भैया क्यों
0: जैकी जैकी जैकी,
1: क्यों क्यों
0: तुम
1: क्यों, कुछ गलत हो गया क्या? सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी मुना। चलो अब तुम्हें घर छोड़ा हूं, थक गई होगी चलते चलते ना।
0: नहीं जैकी, तुम नहीं समझ सकते कि तुम्हारे साथ रहते मैं इतना चल सकती हूँ, इतना इतना इतना कि दुनिया छोटी पड़ जाए। डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ,
1: हाँ सच मोना।
0: सच मेरी जैकी। लेकिन लेकिन जो मैं नहीं बोलती तुमसे,
1: क्यों क्यों क्यों, अब क्या हो गया? मैं
0: मैंने इतना कुछ कह डाला पर तुमसे ये भी ना कहा गया कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। हाँ
1: मैं तुम्हारे लिए आकाश से ढेर सारे तारे तोड़कर लाऊंगा,
0: हाँ
1: उनकी एक सुंदर सी माला गूंथूंगा, और
0: हाय,
1: फिर तुम्हारे गले में।
0: सच तुम कितने अच्छे हो जैकी।
1: तुम भी तो कम नहीं हो मुना।
0: अब और इंसान नहीं सहा जाता जैकी। मेरी माँ बेकार जिद पर अड़ी है कि जब तक तुम्हारे पास अच्छा घर नहीं होगा वो शादी नहीं होने देंगी।
1: मोना, तुम्हारी माँ ही क्या, तुम भी तो यही चाहती हो।
0: हाँ ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी रहने लायक तो जगह चाहिए ही ना।
1: हाँ वो तो ठीक है। सुनो,
0: सुनाओ।
1: घर मिल गया,
0: कहाँ?
1: यहाँ मेरे दिल में। ये देखो, इधर देखो।
0: कितनी प्यारी बातें करते हो तुम जैकी, सच्ची उससे बेहतर घर दूसरा हो भी कौन सा सकता है मेरे लिए।
1: हाँ तो फिर बजवा दूँ शहनाई?
0: हाँ चलेगा।

0: ये क्या कर रखा है मोनी? ये घर है या भड़भूजे की दुकान?
1: भड़भूजे की दुकान।
0: बहुत बोलना आ गया है शायद।
1: हाँ, सुनने वाला जो मिल गया है।
0: अच्छा, जितनी लिफ्ट देता हूँ उतनी ही साथ में आसमान पर चढ़ी जा रही हो। घर ना हो गया, नरक हो गया है। नरक
1: है ही नरक, ये कोई घर है? इससे बेहतर तो गाय घोड़ों के तबेले होते होंगे, तबेले।
0: मगर इसमें मेरी क्या गलती है, बताओगी?
1: गलती तो सब मेरी है।
0: अरे
1: मेरी।
0: और क्या है ही, है ही, बिल्कुल है। उस समय तो बड़े प्यार से बोली थी, दिल से बढ़कर दूसरा बेहतर घर हो भी कौन सा सकता है मेरे लिए। अब रहो ना चैन से उस घर में, काहे को रोज रोज के रोने रोती रहती हो?
1: इसलिए कि रोने का मुझे शौक है। कैसी कैसी मीठी मीठी बातें करके फुसला लिया, वरना मुझ में क्या कमी थी? एक से एक लड़के मुझ पर मरते थे।
0: हाँ, और जिन सबकी बारी बारी से मैंने खबर भी ली थी, और एक वो भी था उनमें, वो रिक्शे वाला, और एक वो क्या
1: चुप रहो, चुप रहो, जो भी थे तुमसे बेहतर थे, लाख दर्जा बेहतर थे।
0: मोनी, क्या आप सिवाय अलग हो जाने की और कोई रास्ता नहीं रह गया है बाकी? आज मैं कितना कुछ सोच कर आया था, ये देखो, फिल्म दिल जली के मैटनी शो के 2 टिकट भी ले आया था। सोचा था बहुत दिन हो गए हैं आज।
1: सच कह रहे हो जय किशन?
0: कह तो सच ही रहा हूँ, लेकिन क्या सिर्फ जैकी नहीं कह सकती?
1: हाय, सिर्फ मोना कहो ना जैकी।
0: ये भी ठीक है।

0: अब जल्दी जल्दी घर चलो, भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है।
1: ओ नो डार्लिंग, आज कुछ और ही प्रोग्राम है मेरा।
0: कहीं होटल वोटल में?
1: अरे नहीं, ये बात नहीं। सोच रहा था आज किसी ऐसी जगह चलें जहाँ कोई ना हो, बस तुम हो, मैं हूँ और मेंटल फूड हो, यानी मन को शांति देने वाली बातें।
0: जैकी तुम्हें कब अकल आएगी, भूखा पेट फिजिकल फूड मांगता है, मेंटल नहीं। और इस वक्त
1: और लेकिन मोना, तब तो तुम कहा करती थी कि
0: स्टॉप।

0: कुछ समझते क्यों नहीं हो, शादी के पहले ऐसी बातें करने का फैशन है। और फैशन हमेशा एक सा रहता ही नहीं है, यानी बदलता रहता है।
1: ओह नो मुना, हम
0: हाँ?
1: फैशन नहीं करेंगे, यानी हम वही पुराना फैशन अपनाए रहेंगे, हम जरा भी नहीं बदलेंगे, यानी जैसे शादी के पहले थे वैसे ही अब भी रहेंगे।
0: खैर खैर, ये सब तो बाद में सोचेंगे,
1: हुँ?
0: पहले खाने की बात करूँ। खाने की?
1: ओ हाँ चलो। ओ डार्लिंग, ये मीनू, इसमें देखो ना कहीं भी मेंटल फूड का जिक्र ही नहीं है, जरा देखो।
0: यू नॉनसेंस, चलो शुरू करो।
1: ए उधर क्या देख रही हो?
0: है वो लड़की नेकलेस नेकलेस कितना सुंदर पहन रही है। हाँ?
1: हाँ, पहन रही है पहन रही है, लेकिन इसमें इतना ललचने की क्या बात है?
0: क्यों ललचूंगी नहीं, कौन से गहने गढ़वा दिए तुमने मेरे लिए?
1: देखो मोना, ये तो तुम शुरू से ही जानती थी कि मैं ये सब नहीं करवा सकता तुम्हारे लिए, कभी भी नहीं।
0: क्यों, उस दिन कहा नहीं था कि तारों की माला बनवा कर तुम्हारे गले में डालूंगा? मैं समझी तुम्हारा इशारा।
1: हाँ बहुत खूब समझी आप, वाह वाह वाह वाह, जवाब नहीं है आपकी अकल का भी।
0: ठीक है तो करो खेती अपनी अकल से, और ज्यादा सुनना मेरे बस का नहीं, मैं जा रही हूँ। हाँ
1: धीरे डार्लिंग धीरे बोलो, ये घर नहीं रेस्टा है, रेस्टा देखो ना सब हमें घूर रहे हैं।
0: होने दो, मैं क्या डरती हूँ इन लोगों से?
1: नहीं देवी मोहनी, डरता तो ये सेवक जय किशन है आपसे, भला आप क्यों डरने लगी किसी से?
0: नो मस्का बाजी।
1: हो रानी, मस्का खाने को तो मैसर होता नहीं, भला लगाने की किसे सूझे। हाँ मैं तो कह रहा था।
0: कुछ नहीं कह रहा था, कुछ नहीं, अब उठिए यहाँ से।
1: किधर चलना है अब?
0: और जगह ही कहाँ है मरने की घर के सिवा।
1: अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, ऐसा करते हैं इस सड़क पर थोड़ी दूर तक चलते हैं, कितना एकांत है, बड़ा आनंद आएगा।
0: मैं नहीं,
1: मैं नहीं, क्यों?
0: थक गई हूँ, नींद आ रही है ना।
1: उफ़ो थक गई हो मोना, तुम तो कहा करती थी कि तुम्हारे रहते इतना चल सकती हूँ कि दुनिया ही छोटी पड़ जाए।
0: ओ तुम तो कहती थी, आफत कर रखी है मेरी तो तुमने।
1: तुमने भी तो यही सब सुना सुना कर मुझे परेशान कर रखा है, नहीं क्या?
0: तुम और मैं ही क्या, ये तो जमाने का चलन है, शादी के पहले सभी स्टेज आर्टिस्टों की तरह मुंह पर मेकअप की चमकदार पर्दे चढ़ाए रहते हैं।
1: हाँ और शादी के बाद वो सारा रंग रोगन साफ हो जाता है और चेहरे बदरंग हो जाते हैं।
0: और क्या, बिल्कुल तुम्हारी तरह।
1: और क्या, तुम्हारी तरह भी तो।
0: हाँ?

0: मोना, सच ऐसे ही खुश रहा करो हमेशा। हंसती मुस्कुराती तुम लाख गुना अच्छी लगती हो।
1: बनाओ मत।
0: भला आज के मुबारक दिन झूठ बोलूंगा?
1: मुबारक दिन? कैसा मुबारक दिन?
0: क्यों, तुम्हारा जन्मदिन मेरे लिए मुबारक दिन नहीं है क्या? अरे लड़ने झगड़ने से क्या होता है मोना, लड़ाई तो वही होती है ना जहाँ प्यार होता है। बोलो बोलो ना।
1: मुझे क्या पता प्यार किस चिड़िया का नाम है। ऐसा कर क्या दिया मेरे लिए जिससे तुम्हारे प्यार का इजहार हुआ हो?
0: हाँ ये भी तो ठीक है। तो मोना, सोचता हूँ आज के दिन ही अगर इजहार प्यार भी किया जाए तो कैसा रहे?
1: मतलब
0: ये कि तुम्हारी एक पुरानी इच्छा पूरी की जाए।
1: सच? क्या तुम मुझे सच्चे मोतियों की माला दिलवाओगे?
0: हाँ इरादा तो था, बड़ी जल्दी पकड़ ली तुमने मेरे दिल की बात।
1: लेकिन कब?
0: आज ही मोना, आज ही। लेकिन पहले प्रॉमिस करो कि अब कभी लड़ोगी झगड़ोगी नहीं।
1: कभी नहीं लड़ूंगी झगड़ूंगी।
0: लिख कर दोगी?
1: इतना भी यकीन नहीं है मुझ पर। खैर लाओ ये कागज। ये लो, अब लाओ मेरी चीज।
0: तुम्हारी चीज मेरे पास ही है, लेकिन दूंगा तब जब मैं रात को अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूँगा।
1: अजीब बात है जैकी, लेकिन उस समय ही क्यों?
0: इसलिए कि खैर छोड़ो, तुम्हारी चीज तुम्हें मिल जरूर जाएगी।
1: चीज नहीं, मोतियों की माला।
0: हाँ बाबा, माला माला, गले में पहनने वाले मोतियों की माला।

0: 이제 키트네야 친애기 ये क्या डिब्बा खाली और डिब्बे में एक धागा ये पुर्जा भी पड़ा है। मोना मोना मेरी पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाया है।
1: ऐसा
0: ऐसा
1: करो,
0: करो धागा
1: धागा अभी संभाल कर रख लो, मोती फिर कभी डलवा दूंगा। हाँ, माफ कर दोगी ना?
0: तुम्हारा जैकी।
2: आपने सुनी झलकी तब और अब। भाग लेने वाले कलाकार थे सतीश माथुर और श्रीमती अचला नागर। आलेख अचला नागर का था और प्रस्तुति सतीश माथुर की थी।
3: गाइस, लेट्स डू अ क्विक कॉल। अब बॉस को कैसे बताऊं मेरी फ्लाइट का टाइम होने वाला है?
4: तू बॉस के साथ कॉल ले। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना अब इजी है क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट एक्सेस और हैसल फ्री कैब्स एंड बस सर्विस भी, तो फिकर नॉट।
5: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
6: फ्लाइट पकड़ना रेस नहीं होनी चाहिए।
5: अब बिजनेस ट्रिप हो या वेकेशन, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना इजी है। यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट एक्सेस और 24/7 कैब फैसिलिटी के साथ टाइम पे पहुंचना गारंटीड। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
7: अभी आप सुन रहे थे झलकी तब और अब। लेखक थी डॉक्टर अचला नागर, प्रस्तुति सतीश माथुर की थी।

ओफ, कितने शरारती हैं ये, कितने रैपर्स एक पर एक चढ़ा रखे हैं। ये एक बस और है और फिर ये डिब्बा। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ी जा रही हैं। सच में मैं बिना बात को ही लड़ती रहती हूँ।

एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न की 1:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ। प्रस्तुति है ओपी सिंह और संजय सारस्वत की।

0: श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आपकी प्रतिक्रियाओं का, आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए ओपी सिंह साहब। स्वागत है सिंह साहब कार्यक्रम में।
1: जी नमस्कार सारस्वत जी, और मैं सभी श्रोताओं का भी स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, और उनकी आने वाली प्रतिक्रिया, सुझाव और शिकायतों का भी स्वागत करता हूँ। और ये बात देखो हम कर ही रहे थे कि
0: जब तक फोन आने शुरू हो गए हैं सर,
1: तो शुरुआत कर देते हैं।
0: जी पहला फोन लेते हैं सर। श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: बुलंद शहर की बुलंद आवाज में मोहम्मद सईद अब्बासी का आपको और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा आदाब।
1: जी नमस्कार करते हैं अब्बासी जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे इस कार्यक्रम के बारे में?
2: बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके यहाँ से प्रसारित जितने भी प्रोग्राम आते हैं एक से बढ़कर एक होते हैं, और यकीन मानिए कि जब से मैंने आपका स्टेशन सुनना शुरू किया है मुझे कोई और भी जगह का कोई भी प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता। सबसे पहले तो ये है कि आरजे जो प्रोग्राम करते हैं उनका बोलने का अंदाज और गानों का चयन बहुत शानदार होता है। यकीन मानिए बड़ी मेहनत करके हम लोगों के लिए प्रोग्राम तैयार करके लाते हैं।
1: जी निश्चित तौर पे, और मेहनत तो होती ही है, लेकिन आप उसको पसंद कर पाते हैं ये और भी बात है कि वो वहाँ तक पहुँच पाते हैं कि आप उसको पसंद करेंगे, आपकी सोच को वो पकड़ पाते हैं और कार्यक्रम करते हैं। तो आप इतनी अच्छी प्रतिक्रिया हमारे कार्यक्रम और हमारे कार्यक्रम करने वाले आरजे के बारे में दे रहे हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी मेहनत करके हम लोगों तक अपने प्रोग्रामों को पहुँचाते हैं। और विशेष तौर से मुझे ये बात ऐसे में

0: और शाम सुहानी जो प्रोग्राम आता है
1: जी
0: वो भी बहुत अच्छा लगता है जी। और एक संडे में प्रोग्राम आता है लोक गीतों पर, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब जितने भी आरजे हैं ना बड़ी मेहनत करते हैं, मुझे इतनी खुशी मिलती है और बोलने का अंदाज भी इतना प्यारा होता है, गाने भी सिलेक्टेड होते हैं
1: संजय,
0: तो हमारे दिल को छू जाते हैं।
1: संजय भाई बैठे हुए हैं, संजय भाई कुछ कहना चाहें?
2: बासी साहब नमस्कार।
0: नमस्कार सर, नमस्कार साहब, मैं तो धन्य हो गया आपकी आवाज सुन के।
2: आपके मैसेजेस, आपके फोन कॉल्स बड़े अच्छे लगते हैं जब आते हैं।
0: जी सर, धन्यवाद जी।
2: जी आप बहुत ही अच्छे सुधी सुनने वाले
1: कुछ
2: हमारे
1: कार्यक्रम ऐसे भी हैं जो हमारे लिसनर्स चॉइस के अलावा उनकी यूटिलिटी पर हैं, स्वास्थ्य संबंधी हैं, कुछ वैसे कार्यक्रम हैं जो लाइव जाते हैं?
0: हाँ, वो हाँ, जो डॉक्टर्स से रिलेटेड होता है ना, जो परेशानी से जूझ रहे होते हैं।

0: हाँ वो हाँ जो डॉक्टर से रिलेटेड होता है ना, जो परेशानी से जूझ रहे होते हैं लोग, शेयर करते हैं, डॉक्टर उनको समझाते हैं कि उनको किस तरीके से मेडिसिन लेनी है, कहाँ दिखाना है, बहुत अच्छे तरीके से सजेस्ट करते हैं, उसमें सहयोग रहता है। हमारे यहाँ मथुरा के जो आरजेस होते हैं वो भी उन्हें बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं।
1: चलिए चलिए, इसका मतलब आप मथुरा आकाशवाणी और उसके कार्यक्रमों को नियमित सुन रहे हैं, इसके लिए हम बहुत तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं।
0: सर मैं एक छोटी सी मेरे मन में एक चीज है वो बताना चाह रहा हूँ।
1: स्वागत है स्वागत।
0: पहले ये जो आप प्रोग्राम करते हैं ना
1: जी,
0: आधे घंटे का प्रोग्राम जाता है गीत बात SMS और शाम सुहानी,
1: हाँ।
0: उसके बाद सर फिल्म संगीत जाता है जिसका कोई औचित्य नहीं है। फिल्म संगीत श्रोता आपके प्रोग्राम को सुनते हैं और मैसेजेस भेजते हैं, टाइमली भेजते हैं, मगर कुछ श्रोता महरूम रह जाते हैं अपना नाम सुनने से। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है और सारे अधिकारियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोग्राम का टाइम बढ़ा दिया जाए।
1: जी उसमें आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कभी उसमें जब विधानसभा की प्रक्रियाएं आती है तो वो प्रोग्राम
0: वो
1: होते
0: तो
1: हैं,
0: मजबूरी हो जाती है सर।
1: नहीं, जो आकाशवाणी के जो चंक बनाए जाते हैं, जो कार्यक्रमों का नाम दिया जाता है, वो इसी तरह से दिया जाता है कि अन्य आने वाली चीजों को भी हम समाहित कर सकें, उसमें डाल सकें। अगर एक घंटे का होगा और जब उसको काटेंगे तो फिर शायद आपको ज्यादा बुरा लगेगा।
2: हाँ, वो उचित नहीं,
0: नहीं। बिल्कुल
1: सही। तो इसीलिए आधा घंटे का प्रोग्राम आकाशवाणी के हिसाब से बहुत बड़ा होता है उसमें।
0: मैं टाइम से मैसेज करता हूँ मगर फिर भी महरूम रह जाता हूँ अपना नाम सुनने से, छूट जाता
1: है। कई बार दूसरे लोगों का भी नाम सुनिए, उनके नाम के साथ भी उनकी फरमाइश का आनंद लीजिए, उसमें भी आपको अच्छा लगेगा। बाकी आपने प्रतिक्रिया दी है, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप
2: नमस्कार अब्बासी साहब।
0: नमस्कार संजय भाई।
2: एक और फोन कॉल उठाते हैं सर।
1: जी जी जी।
2: हेलो
3: जी, आदरणीय सर जी नमस्कार।
2: नमस्कार, आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं आप?
3: जी धन्यवाद सर, मैं आपका श्रोता, ब्रज रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह, ग्राम नगला राणा चोरा।
1: जी कैसे हैं राणा जी?
3: आदरणीय सिंह साहब नमस्कार।
1: प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, बताइए।
3: ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है, आप बताइए, आप और समस्त आकाशवाणी टीम कैसी है सर?
1: टीम आपके साथ जुड़ी हुई है और आपसे बात कर रही है, संवाद कर रही है, कुछ प्रतिक्रियाएं कार्यक्रमों के बारे में आपसे जानना चाह रही है, तो स्वागत है। कुछ बताइए कि कार्यक्रम इस वीक के आपको कैसे लगे?
3: महोदय पूरे सप्ताह सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे गए और आप अपने प्रोग्रामों पर खड़े उतरे, धन्यवाद।
1: जी जी, ये तो अच्छी प्रतिक्रिया है, कोई शिकायत हो तो वो भी बता दीजिए।
3: शिकायत है सर, अगर आप सुने और
1: नहीं, हम देखो शिकायत तो सुनते हैं लेकिन उसका निस्तारण, जैसे भाई डॉक्टर दवा देता है, धीरे धीरे असर होता है, तो सुधार कार्यक्रमों में नियमित चल रहा है और भी सुधारेंगे, आपके सुझाव आ रहे हैं उस पे, जब कभी परिवर्तन होगा तो परिवर्तन करेंगे, यही कहते आ रहे हैं, यही कहेंगे आपसे, बाकी तो हम भी मर्यादाओं में हैं, सीमाओं में हैं, और यह है कि आपके साथ हैं तो इसलिए मस्ती है, क्यों संजय भाई?
2: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर, हर चीज की एक लिमिट तो होती ही है सर।
1: जी जी
2: जी चौधरी साहब,
3: सर आपके केंद्र से कार्यक्रम जाता था दर्पण,
1: नहीं जाता क्या था, अभी भी
3: सुनने को नहीं मिल रहा है, अगर आप उस कार्यक्रम को पुनः शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस कार्यक्रम से हम श्रोताओं को बहुत सारी जानकारी मिलती थी हर क्षेत्र की, कहाँ कौन चीज प्रसिद्ध है और कहाँ क्या है, मतलब वो कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था तो, और वो प्रश्न उत्तरी कार्यक्रम।
1: महेंद्र जी ब्रदर्पण कार्यक्रम तो हफ्ते में 3 बार अभी भी जा रहा है, सोमवार को जाता है, बुधवार को जाता है और शनिवार को जाता है, वही 9:30 बजे टाइम है उसका।
3: उसमें कुछ प्रश्न किए जाते थे श्रोताओं से के और सही जवाब मिलने से उनके नाम,
1: अच्छा
3: और उनको
1: समझ
3: किया जाता।
1: आपका कहना है कि उसका थोड़ा रूप स्वरूप बदल गया है, पहले उस कार्यक्रम का जो ड्यूरेशन था वो लगभग 1.25 घंटे का था, अभी 1/2 घंटे का है, तो कुछ चीजें उसमें से निकल गई हैं, जैसे रेलवे सूचनाएं आजकल नहीं देते हैं, श्रोताओं से जुड़ के कुछ प्रश्न पूछते थे
2: जी, जी, जी।
1: वो नहीं ले रहे, तो ये सुझाव अच्छा है, देखते हैं कि उसमें कुछ चीजें अगर हम श्रोताओं को इन्वॉल्व करने के लिए प्रोग्राम के शुरू में डाल लें और बाद में उसका कुछ ले सके, तो देखते हैं कितना संभव हो पाता है, सुझाव अच्छा है, करेंगे प्रयास करेंगे।
3: सर यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा
1: जी,
3: आप अपने केंद्र से किसान वाणी कार्यक्रम जाता है तो उसके अंत में मंडी से प्राप्त बाजार भाव जरूर बताया करें और मौसम संबंधी जानकारी भी दिया करें।
1: जी ये व्यावहारिक सुझाव है, और मौसम संबंधी जानकारी तो दे रहे हैं लेकिन शायद बाजार भाव कभी कभी रह जाते हैं।
2: तो

0: का संपर्क कर लेते हैं और मंडी के भाव भी हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचा दिया करें।
1: नियमित रूप से
0: हाँ
1: मिलेंगे
0: जी,
1: आपको।
0: ये तो ये अच्छा सुझाव है और आपने ध्यान दिलाया, तो यही एक सुधी और अच्छे श्रोताओं का वो है कि हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कोई चीज छूट रही है
1: बिल्कुल
0: किसी भी
1: बिल्कुल
0: कारण से, हम ये नहीं कह सकते कि जानबूझ के ऐसा हो रहा है, लेकिन किसी कारण से अगर छूट रहा है वो पक्ष और जिसको हम कर सकते हैं इजीली, आपको धन्यवाद करते।
2: सर, सुझाव तो नहीं है, केवल एक निवेदन है, अनुरोध है कि न जाने आप कब अमल में लाएंगे कि जो हेलो आकाशवाणी है 30 मिनट का प्रोग्राम है, इसे 1 घंटा कर दिया जाए, कब करेंगे सर?
0: चलिए, ये तो हमारे श्रोताओं की नियमित मांग है। संजय भाई आप भी बता दीजिए इस।
1: हमारा कार्यक्रम चौधरी साहब हफ्ते में 6 दिन प्रसारित होता है लगातार, तो आधे घंटे का कार्यक्रम लगभग प्रतिदिन प्रसारित होता है शनिवार को छोड़ के। बहुत ज़्यादा अगर उसको समय बढ़ाने का और प्रयास किया जाएगा तो दूसरे कार्यक्रमों पे भी उसका असर पड़ सकता है और फिर सुनने में भी थोड़ा बोरिंग सा महसूस
0: हाँ,
1: होगा लोगों को।
0: तो हफ्ते में 6 दिन कोई प्रोग्राम आधा घंटे का ठीक है, बना हुआ है। फिर आप ये देखिए महेंद्र सिंह जी के, उसको रिकॉर्ड करना, बनाना, लेके आना, उसमें बहुत
1: बहुत
0: सारे
1: मेहनत होती है।
0: आरजे जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो अच्छे लोग आपके साथ जुड़ते हैं, तो कुछ हमने कहा ना सीमाओं में बंधे हुए लोग हैं, साधन संसाधन भी सीमित हैं, तो उसमें आपकी सेवा भी जितनी हो पा रही है वो काफ़ी है उसमें। बाकी सुझाव है, कभी संभव हुआ तो इस पर भी विचार करेंगे।
1: बिल्कुल
2: हमने माना सर, पंचों की बात फिर माथे पे, ठीक है,
0: चलिए चलिए ठीक है,
2: आप
0: आपका
2: जैसा चाहते हैं वैसा, ठीक है सर, राधे राधे।
0: राधे
1: ठीक
0: राधे,
1: है,
0: धन्यवाद
1: नमस्कार।
0: धन्यवाद धन्यवाद
1: श्रोता लगातार जुड़ रहे हैं हमसे। सिंह साहब
0: जी। एक पत्र पढ़ देता हूँ,
1: जी,
0: हमारे सुधीर श्रोता हैं प्रकाश राही जी
1: जी
0: गोवर्धन से लिखते हैं, और आप लिख रहे हैं कि इस वीक में आपने जो गुरुवार को बच्चियों के संदर्भ में कार्यक्रम किया, जो युवा होती हुई बच्चियां हैं, बड़ी होती बच्चियां हैं, उनकी व्यक्तिगत साफ सफाई पर, उनके शारीरिक बदलाव पर और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर, तो
1: जी
0: ये एक अच्छी पहल थी, अच्छा कार्यक्रम था, और जो हमारी जो विशेषज्ञ वार्ताकार थी डॉक्टर सारिका गौतम, उन्होंने अच्छे जवाब दिए, और ये एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, बड़ा व्यक्तिगत और बड़ा स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है, और इस पर परिवारों में उतनी बात नहीं हो पाती जितनी होनी
1: होनी
0: चाहिए।
1: चाहिए,
0: जी,
1: बिल्कुल
0: तो ये ऐसे कार्यक्रम आप करते रहें, इसका ये धन्यवाद दे रहे हैं संजय भाई।
1: बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ये कुछ ऐसा विषय है जिस पे
0: जी
1: बच्चियां भी काफी संकोच करती
0: हाँ
1: हैं
0: हाँ
1: और उनके माता पिता भी बात करने में कुछ संकोच
0: जी,
1: करते हैं।
0: इसको कई बार चर्चा का मुद्दा ही नहीं मानते, और
1: जी
0: एक
1: जी
0: व्यक्तिगत समस्या वो छोड़ के मान दिया जाता है, लेकिन आज स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारियाँ हो गई हैं, जो रिसर्च आ रही हैं, जो जानकारियाँ आ रही हैं, वो ये कह रही हैं कि ये इतना बड़ा मुद्दा है कि
1: जी
0: अगर इस पे पर्सनली हम हाइजीन पे ध्यान नहीं देते तो आगे चल करके बहुत सारी ऐसी बीमारियां, चूंकि वही बच्चियां पारिवारिक जीवन में जाएंगी, सामाजिक
1: बिल्कुल
0: जीवन में जाएंगी, और पूरी समझ नहीं है, आधी अधूरी जानकारी वो खुद भी जीती हैं और वो ही जानकारी परिवार को आगे ट्रांसफर करेंगी, तो
1: काफी गंभीर परिणाम भी आ
0: हाँ,
1: सकते हैं सर।
0: तो वो एक अगर अच्छी जानकारी उसके साथ है, समझ है, तो वो एक कई गंभीर बीमारियों से वो बच
1: बच
0: सकती है,
1: सकते हैं,
0: तो
1: बिल्कुल
0: इस पर सारिका गौतम के जो विचार थे बड़े बड़े अच्छे थे,
1: जी
0: और इसको
1: जी
0: हमें समाज में चर्चा करनी चाहिए, बच्ची को बताना चाहिए। कई बार उन्होंने कहा कि अब ये जो पीरियड्स की एज है
1: जी जी
0: वो 14-15 से घट करके अब 10 के भी नीचे आ गई है,
1: जी
0: और एक
1: जी
0: बच्ची जब स्कूल में होती है और अचानक उसके सामने ये समस्या आती है तो वो बड़ा परेशान,
1: बहुत
0: हैरान
1: परेशान
0: और
1: होती है,
0: बड़ा ट्रॉमेटिक हो जाती है, तो
1: बिल्कुल
0: जानकारी मुश्किल में है, उसके पास एक नेपकिन पैड पड़ा हुआ है नहीं है, तो वो ये समझे कि ये तो एक हेल्थ प्रॉब्लम है, और जाके अपने स्कूल प्रशासन से मिले,
1: मिले मिले,
0: अपनी प्रिंसिपल से बात करे, अपनी टीचर से बात करे, तो वहाँ सहयोग मिल जाता है,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: स्कूलों में इस तरह की सुविधाएं अब हैं, इसको
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: बिल्कुल। बहुत अच्छा विषय था सर कार्यक्रम
0: जी
1: का। और अब कार्यक्रम का समय तो समापन की ओर है
0: हाँ,
1: सर।
0: देखो पता नहीं लगा,
1: जी
0: बातें लंबी हो गई, चर्चाएं लंबी हो गई,
1: जी
0: लेकिन चलते चलते पता और वो बता दीजिए
1: हाँ,
0: उसको।
1: हमारे कार्यक्रम का पता है, श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी वृंदावन रोड मथुरा, पिन कोड संख्या है 281003, और हमारा फोन नंबर है सर वही
0: जी
1: 2530135, और मथुरा से बाहर के श्रोता अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो 0565 कोड लगाकर हमसे बात करें।

0: मोबाइल पर भी जो लोग बात करते हैं वो भी 565 कोड लगा लेंगे, और व्हाट्सएप से जैसे राही
1: मैसेज
0: जैसे
1: प्राप्त
0: हाँ
1: हुआ
0: तो
1: है
0: 94-122-25-575 वो नंबर भी है, वहाँ अपने SMS कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते
1: बिल्कुल
0: हैं। आज जो श्रोता हमसे जुड़े उनका धन्यवाद तो हम दे चुके हैं, एक बार पुनः धन्यवाद करते
1: जी,
0: हैं
1: बिल्कुल धन्यवाद है सभी श्रोताओं का हमारे।
0: और इजाजत लें।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ। प्रस्तुति थी ओपी सिंह और संचित सारस्वत की।

एफएमए सुदूरदर्शन लव 2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय अपराह्न की 1:45 हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में लीजिए सुनिए कुमार सानू और सारिका कपूर को। फिल्म है हाँ मैंने भी प्यार किया है, रचना समीर की है, संगीत है नदीम श्रवण का।

अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और सारिका कपूर की आवाज़ों में हाँ मैंने भी प्यार किया है फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत में अगला गीत आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संबंधी इस सूचना के बाद। श्रोताओं वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार 13 जुलाई को अपराह्न 1:15 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधित रोग कारण लक्षण एवं निदान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुनीत। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565253013।

पाचपर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में त्वचा संबंधित रोग कारण लक्षण एवं निदान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधित रोग कारण लक्षण एवं निदान। श्रोताओं यदि आप कील मुहासे यानी ब्लैक हेड्स, आंखों के नीचे काले घेरे, दाद, खाज, हर्पीज, फोड़े फुंसी, मस्से, एलर्जी, फंगल संक्रमण, सोरायसिस, रिंकल्स, हेयर फॉल आदि समस्याओं के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर गुनीत से। श्रोताओं ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार 13 जुलाई 2026 और समय अपराह्न 1:15। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए अब आपको सुनवाते हैं केके की आवाज में हिट स्टोरी 2 फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है तनवीर गाजी ने और संगीत दिया है राशिद खान ने।

केके की आवाज में गाए हिट स्टोरी 2 फिल्म के संगीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अपराह्न के दो बजने को है। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले अंग्रेजी में फिर उसके बाद हिंदी में, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: Of the two semi-finals will meet in the FIFA World Cup final on July the 20th at New York, New Jersey Stadium. The losing teams will play the third place playoff on July the 19th in Miami. The India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Bihar, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. It has predicted heavy rainfall conditions at isolated places over Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, East Uttar Pradesh, Gangetic West Bengal and Himachal Pradesh today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India condemns attack on commercial vessel GFS Galaxy off coast of Oman. 10 Indians rescued, one reported missing. New Delhi expresses concern over continuing attacks on commercial shipping in the region. Prime Minister Narendra Modi returns to New Delhi after concluding several agreements during his visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones of several development projects in Ahmedabad. Employees Provident Fund Organization introduces a six-month amnesty scheme for establishments operating private Provident Fund Trust to regularize their status. In Wimbledon, Jannik Sinner to lock horns with Alexander Zverev for men's singles title this evening. And in FIFA World Cup, England and Argentina enter semi-finals. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमरीकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से

0: बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
3: ईपीएफओ की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर

0: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गृहमंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
3: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला

0: डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिन्नर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हनयू और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, 1 लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय अपराह्न के 2:30 हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत में लीजिए, सुनिए कार्यक्रम का यह पहला गीत। अलका याग्निक और उदित नारायण व साथियों की आवाजों में फिल्म है राजा हिंदुस्तानी, गीत है समीर का और संगीत है नदीम श्रवण का।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत। और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत।

उदित नारायण और साधना सरगम को अभी आप सुन रहे थे फिल्म मोहरा में। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएंगे इस कार्यक्रम संबंधी सूचना के बाद। श्रोताओं, वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार 13 जुलाई को अपराह्न 1:15 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधित रोग, कारण, लक्षण एवं निदान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुनीत। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-25-30135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप

0: संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में त्वचा संबंधित रोग, कारण, लक्षण एवं निदान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधित रोग, कारण, लक्षण एवं निदान। श्रोताओं, आप यदि कील मुहासे, ब्लैक हेड्स, आंखों के नीचे काले घेरे, दाद, खाज, हर्पीज, फोड़े फुंसी, मत्स्य एलर्जी, फंगल संक्रमण, सोरायसिस, रिंकल्स, हेयर फॉल आदि समस्याओं के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर गुनीत से। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार 13 जुलाई 2026 और समय अपराह्न 1:15। सूचना समाप्त हुई।
1: Guys, let's do a quick call.
2: अब बॉस को कैसे बताऊं मेरी फ्लाइट का टाइम होने वाला है।
3: तू बॉस के साथ कॉल ले। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना अब इजी है क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट एक्सेस और हैसल फ्री कैब्स एंड बस सर्विस भी, तो फिकर नॉट।
4: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
5: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
6: आराम से मैडम।
5: क्या
6: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
7: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण को फिल्म राज में। गीत लिखा है समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे राज फिल्म का गीत। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए यादें फिल्म का गीत। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

उदित नारायण और साथियों की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे यादें फिल्म का गीत। और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला और अंतिम गीत अलीशा चुनाया और जुबिन गर्ग की आवाजों में। फिल्म है क्रिश 3, गीत लिखा है समीर अंजान ने, संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

अलीशा चुनाय और जुबिन गर्ग की आवाजों में गाये फिल्म कृष्णी के संगीत के साथ ही सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत FM 102.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की प्रथम सभा यहीं पर संपन्न होती है। आज शाम 5:30 पर हमारी आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। 5:30 हुए हैं, हमारी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जीवन में प्यार और मेहनत, सकारात्मक सोच हम सब के लिए कितनी आवश्यक है। अगर हम मेहनत करें और रास्ता सही चुनें तो निश्चित रूप से हम सही दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, और मेहनत करें और रास्ता बिना चुने करें तो मेहनत कहाँ जा रही है न आप ये जानते हैं न मैं ये जानता हूं। हमेशा जीवन में परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन हम सबको सकारात्मक सोच के साथ अपनी मेहनत, अपनी लगन, परिश्रम जारी रखना है, क्योंकि परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। मेहनत कर जे मानती, मेहनत राखे मान, बिन मेहनत रीझे नहीं गुरु पिता भगवान। जब एक मजदूर की मेहनत का पैसा उसको मिलता है तो हम ईश्वर की मेहनत, ईश्वर के नाम के साथ कोई मेहनत करें अपने लक्ष्य के प्रति, तो उसका फल देर सवेर अवश्य मिलता है। आवश्यकता है केवल धैर्य रखने की, अपने आप को मजबूत करें। जिस प्रकार शरीर को बलशाली बनाने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को बलशाली बनाने के लिए योग की आवश्यकता होती है। अपने आप को स्वस्थ रखें, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित बनाएं, जो काम करना है उसको पहले सोचें समझें तब उस पर आगे बढ़ें। कहते हैं कि आधा काम तो तभी पूरा हो जाता है जब हम सही दिशा में, सही लक्ष्य के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। विद्या पाने के लिए लगन, चेष्टा ये बहुत आवश्यक है। काग चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव चा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। हम सबको इस

बाकी को ध्यान अवश्य रखना चाहिए। हमारे युवाओं की जो उम्र है वो शिक्षा ग्रहण करने की है, और आजकल सरकार के द्वारा शिक्षा के साथ साथ रोजगारक परक शिक्षा भी हम सबको सरकार के द्वारा दी जा रही है। अपना मूल्य बढ़ाएं, पैसा आपके पीछे चलेगा, पैसे के पीछे न चलें, चलें अपने आप के मूल्य को बढ़ाने को, अपनी योग्यता बढ़ाने को। निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य के प्रति अगर समर्पित होकर मेहनत करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको कोई रोक सके। सबसे बड़ा

कि आप को कोई रोक सके। सबसे बड़ा बलशाली अपना मन होता है। सबसे ज़्यादा आदमी स्वयं को जानता है, अपने आप को आप जाने, किसी को जानने की आवश्यकता नहीं है। निरंतर अभ्यास के साथ मेहनत करते रहें, एक ना एक दिन आपको वो मंजिल मिल ही जाएगी जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। बात कुछ सकारात्मक सोच मेहनत की हुई। अगर हमारे युवा इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो देश के लिए युवा ही धरोहर है। युवा आगे बढ़ते हैं, देश आगे बढ़ता है। देश की एकता और अखंडता में युवाओं का हमेशा से योगदान रहा है। सम्मिश्रण युवाओं का और बड़ों का, दोनों के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो एक ना एक दिन आप मंजिल पा ही लेंगे। ये तो बात हुई कुछ हमारी आपकी बातचीत की, और अब ये गीत।

0: फ्लाइट है
1: आराम से मैडम।
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।

0: आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मनहर उदास को, फिल्म का नाम था हीरो।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।
1: एक प्रकार

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने इस

0: निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि यह अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वो इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमान ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 250 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स फाइनल्स में चीन की गुआ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मेल्डोनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील के लुइसा स्टेफिनी से जारी है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल आज इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे देश गान। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम होगा 6:15 पर। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे मृदुल कुमार पांडे। चर्चा आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में बरसात के मौसम में डेयरी और पशुधन प्रबंधन पर।

और साथ ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड लाभ और उपयोग विषय पर। इसके अलावा आप सुनेंगे मनभावन क्रम में अपनी ही पसंद के लोकगीत। संध्या वंदन कार्यक्रम होगा 6:45 पर। ब्रज साहित्य कार्यक्रम में 7:05 पर हम आपको सुनवाएंगे उद्धव शतक सुपाठ। प्रादेशिक समाचार 7:18 पर हम आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे। 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्याम सुहानी फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं 8:00। देशगान एक बार पुनः आप सुनेंगे 8:20 पर। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम होगा 8:30 पर। आज आप सुनेंगे मदर इंडिया फिल्म के कुछ गीत। 9:15 पर आप सुन सकते हैं सुहाने तराने। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम। 10:00 रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम होगा, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से ले करेंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। और अब सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। वर्णतालोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार 13 जुलाई अपराह्न 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधित रोग, कारण, लक्षण और निदान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर गुनीत, वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565 कोड के सहित 25:30-135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94-122-25-575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में त्वचा संबंधित रोग, कारण, लक्षण और निदान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है त्वचा संबंधित रोग, कारण, लक्षण और निदान। श्रोताओं, यदि आप कील मुहासे, ब्लैक हेड्स, आँखों के नीचे काले घेरे, दाद, खाज, हरपीज, फोड़े, फुंसी, मस्से, एलर्जी, फंगल संक्रमण, सोराइसिस, रिकल्स, हेयर फॉल आदि समस्याओं के समाधान के लिए पूछ सकते हैं डॉक्टर गुनीत, वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ से अपने प्रश्न। ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन 13 जुलाई 2026, समय 1:15। डॉक्टर होंगी डॉक्टर गुनीत, विषय रहेगा त्वचा संबंधित रोग, कारण, लक्षण और निदान। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 kHz पर। प्रस्तुत है ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम।

आप सुन रहे थे संवेश्वरों में देशकाल। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं मृदुल कुमार पांडे।

सब भैयान को हमारी राम राम। भैया, बरसात के मौसम में डेयरी और पशुधन को प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पशुओं को बारिश के पानी से बचाएं और उनके बाड़े को साफ सूखो और हवादार रखें। गीले फर्श के कारण पशु फिसल सके हैं या बिनकू थन व खुरते जुड़ी बीमारी है सके है। जाते बचाव को भूसा, सूखी घास या लकड़ी को बुरादा बिछाएं और नियमित रूप से बदलते रहें। हवा को आवागमन अच्छा होना चाहिए। भैया, बरसात में अत्यधिक हरो चारो खाए थे पशुओं को दस्त है सके हैं। इन्हें सूखो चारो मिला के खिलावें। हरे चारे पे कीड़न के लार्वा है सके हैं, जा वजह से घास को थोड़ा धूप में सुखा के खिलाएं। चारे को नमी से बचाएं, अन्यथा फफूंद लग सके है। पशुओं को दाने में संतुलित मात्रा में प्रोटीन, खनिज लवण, खनिज मिश्रण और नमक शामिल करें। भैया, बरसात में सबसे आम समस्या है थनैला रोग की, तो दूध निकालवे थे पहले और बाद में थनन को पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा के हल्के घोलते सफाई कर लें। बारिश शुरू हैवे पे ते पहले ही पशुओं को गल घोंटू, लंगड़ा बुखार, खुरपका और मुंह पका जैसी बीमारियों को टीका लगवा लें। जू और किलनी जैसी समस्याओं से बचवे को बाड़े के आसपास की झाड़ियों को काट दें और पशुओं पर कीटनाशक को सुरक्षित छिड़काव करें। भैया, पशुओं को तालाब या रुके भए बारिश के गंदे पानी में न जान दें। उन्हें हमेशा साफ और ताज़ा पानी ही पीवे को दें। तो भैया, जा तरीका ते प्रबंधन करवे की आवश्यकता है। अब कार्यक्रम में हैं जी लोकगीत।

ढोरीलाल गोला के स्वर में भैया ने सुनो जी लोकगीत। भैया किसान क्रेडिट कार्ड किसान भैयान को एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जो उन्हें खेती पशुपालन और मछली पालन को सस्तो और आसान ऋण प्रदान करे है। जाके तहत किसान अपनी जरूरत के अनुसार 5 लाख रुपया तक को ऋण ले सके हैं और फसल कटवे या बिकवे के बाद चुकाए सके हैं। जाके भैया अनेकन लाभ हैं, जैसे कि जा पे ब्याज दर आमतौर पर 7% प्रतिवर्ष हुए है। समय पर ऋण चुकाए वाले किसानन को 3% की अतिरिक्त छूट मिले है। जाते ब्याज प्रभावी रूप से केवल 4% रह जाए है। वर्तमान में केसीसी लोन की अधिकतम सीमा बढ़ाए के ₹5 लाख कर दी गई है, जहाँ किसानन को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, मृत्यु या विकलांगता कवर ₹50,000 तक और फसल बीमा की सुविधा हो मिले है। लोन को भुगतान करवे को लचीले विकल्प हुए हैं जो किसान की फसल कटाई के चक्र से जुड़े हुए हैं। जाए एटीएम, चेक या डेबिट कार्ड के माध्यम से आसानी से इस्तेमाल किया जा सके है। तो भैया अभी बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग की। बातें पहले सुनने में हैं जी लोकगीत शालिनी शर्मा के स्वर में।

फसल कटाई के बाद के खर्चा और किसानन की घरेलू जरूरतन को पूरा करवे को कियो जाए है। गाय भैंस मुर्गी पालन या मछली पालन से जुड़ी कार्यशील पूंजी की जरूरत को खेतन में सिंचाई के पंप ट्रैक्टर या अन्य कृषि संपत्ति की मरम्मत और रख रखाव को कियो जाए है। जाके कार्य आवेदन अपने नज़दीकी सरकारी या निजी बैंक जैसे के SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है में जाके कियो जा सके है। जाके कार्य भूमि के दस्तावेज आधार कार्ड पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होए है। भैया जावाद के बाद अब सुनो जी अगलो लोकगीत।

भैया ने सुनो जी लोकगीत, स्वर दियो हो शालिनी शर्मा ने। भैया बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ और उपयोग की। भैया किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि संबंधी उपकरण खरीदवे को

गिरीश कुमार के स्वर में भैया आनंद ले रहे हैं जालो गीत को। दामोदर शर्मा के स्वर में प्रस्तुत है जी अगलो लोकगीत।

भैया आनंद ले रहे हे जालो गीत को, स्वर हो दामोदर शर्मा को। जाई के संग आज के जा कार्यक्रम को यहीं पे दे हैं विराम, सब भैयान को हमारी राम राम।

आप सुन रहे थे मन भावन क्रम, मैं अपनी पसंद के लोकगीत ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम के तहत। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम था गंगा की सौगंध। ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज साहित्य कार्यक्रम में लीजिए सुनिए उद्धव शतक सौ पाठ।

सॉफ्टवेयर कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत जगन्नाथ दास रत्नागर कृत उद्धव शतक की संगीतमय प्रस्तुति। संगीत संयोजक सुरेश गुप्ता, प्रस्तुतकर्ता मोहित कुमार।

हे उद्धव, जब तुम यहां से लौटकर श्री कृष्ण के पास जाओ तो नंद, यशोदा, गाय, गोपिकाओं और वृषभान के हार की कोई भी बात, कोई भी चर्चा श्री कृष्ण से मत करना। हम हाहा खाकर अर्थात अनुनय विनय करती हुई कहती हैं कि तुम यहां ब्रज के प्रपंचों से तनिक भी न पसीजना। श्री कृष्ण जब विरह व्यथा सुनेंगे तो उनकी आंखों में आंसू भर आएंगे और उनका मुख मलिन और उदास हो जाएगा। इसलिए ब्रज के दुखों एवं कष्टों का तो रंच मात्र भी बखान न करना उद्धव, रंच मात्र भी बखान मत करना। तुम तो केवल इतना कहना और इतना करना कि हम लोगों के नाम को बताकर और गांव का ध्यान दिलाकर श्री कृष्ण से हमारी राम राम कह देना। इतने से ही श्री कृष्ण हमारे विषय में सब कुछ समझ जाएंगे उद्धव, सब कुछ समझ जाएंगे।

रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव के कदम प्रेम के नशे में छके हुए कहीं के कहीं पड़ रहे हैं। उनके अंग थके हुए हैं और नेत्रों में शिथिलता छाई हुई है। रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव इस प्रकार चकित से आ रहे हैं मानो किसी भूली भावना को याद कर रहे हों। उनके एक हाथ में माता यशोदा का दिया हुआ मक्खन है और दूसरे हाथ में राधा द्वारा भेजी गई श्रेष्ठ बांसुरी सुशोभित है। उद्धव अत्यंत आदर की भावना के कारण इन वस्तुओं को पृथ्वी पर नहीं रखते और रोने के कारण आंखों से बहने वाले आंसुओं की अधिकता को वे बाहों से ही पोंछ लेते हैं।

0: अभी आप सॉफ्टवेयर कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक की संगीतमय प्रस्तुति सुन रहे थे। गायक कलाकार थे आंशुना सक्सेना, वादक कलाकार थे बांसुरी पर मोहन श्याम पचौरी, वायलिन पर शकील अहमद, तबले पर गुलाम अहमद, पखावज पर राधा रमन दास, साइड रिदिम सत्य नारायण शर्मा और ऑर्गन पर आशीष कुमार अग्रवाल।
1: कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश भर में पौधरोपण महाअभियान के तहत लगाए गए 35 करोड़ से अधिक पौधे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 9 वर्षों में राज्य में भौतिक विकास के साथ वन क्षेत्र में भी हुआ विस्तार। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल करेंगे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नितिन मिश्रा ने कहा, 22 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति पर होगा फैसला, न्यास के अधीन ही करेंगे काम। और बारिश के बाद आगरा में यमुना और बलिया में गंगा समेत कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन पूर्वांचल के कई स्थानों पर बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब

0: समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में पौधरोपण महाअभियान एक पेड़ माँ के नाम के तहत आज 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पवित्र त्रिवेणी के पौधों को रोपकर इस महाअभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति के असंतुलन को संतुलित करने के लिए जरूरी है कि पर्यावरण के प्रति हर नागरिक अपने दायित्व का निर्वहन करे। राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और भौतिक विकास के साथ साथ प्रदेश में वनाच्छादन को विस्तार देने में सफलता हासिल की है।
1: यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी वृद्धि हुई है। नए नए एक्सप्रेसवे, हाईवे, सड़कों का एक लंबा जाल बिछा है। नए नए उद्योग आए हैं। शहरीकरण में भी नई नई कॉलोनियां बनी हैं, बसी हैं। सबसे ज्यादा भौतिक विकास की गति को तेज करने में योगदान देने वाले राज्य के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन सबसे ज्यादा भौतिक विकास के साथ साथ पर्यावरण की दृष्टि से बड़े राज्यों में यूपी ने अपने वनाच्छादन को भी विस्तार देने में सफलता प्राप्त की है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विकास वाटिका की स्थापना, वन की आधारित कैलेंडर का विमोचन और मौलश्री का पौधा लगाकर हरित उत्तर प्रदेश के संकल्प को आगे बढ़ाया। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को पौधे और चेक भी प्रदान किए। इस अवसर पर वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना भी मौजूद थे। प्रदेश भर में चलाए गए वृक्षारोपण महाभियान के क्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनभवन परिसर में सफेद चंदन का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि सभी को प्रकृति के संरक्षण और स्वस्थ जीवन पद्धति को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। वहीं प्रदेश भर में जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने अभियान में हिस्सा लिया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पौधरोपण महाअभियान के तहत उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने बाराबंकी में कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण और माँ के सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण जन अभियान है। आगरा के सिंगंदरा में स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पौधारोपण कर इस अभियान की शुरुआत की। बागपत में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी और केपी मलिक ने वृक्षारोपण किया। कानपुर नगर में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, इटावा में राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने पौधारोपण किया। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। 14 जुलाई से वाहन इस एक्सप्रेसवे पर दौड़ने लगेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: 63 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे लखनऊ और कानपुर के बीच की यात्रा के समय को मौजूदा 3 घंटे से घटाकर केवल 45 मिनट कर देगा। इस एक्सप्रेसवे पर दुपहिया वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। यह भारत का पहला बैरियर मुक्त एक्सप्रेसवे भी बनेगा, जिसमें टोल प्लाजा से 500 मीटर पहले ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे और फास्टैग रीडर लगाए गए हैं, ताकि वाहनों को रोके बिना टोल टैक्स काटा जा सके। हादसे की स्थिति में AI सक्षम कैमरे तुरंत NHAI नियंत्रण कक्ष को सूचित कर देंगे। इस एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ कानपुर उन्नाव लालगंज के साथ साथ गंगा एक्सप्रेस से आउटर रिंग रोड से भी कनेक्ट किया गया है। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नीपेन मिश्रा ने आज अयोध्या में बताया कि रामकथा संग्रहालय की सभी गैलरियों की स्क्रिप्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। संग्रहालय में भगवान श्री राम के वनगमन से जुड़ी यात्रा को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संग्रहालय के निर्माण पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। श्री मिश्र ने बताया कि 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होगी, जिसमें CEO की नियुक्ति, समितियों और उप समितियों के भविष्य सहित कई प्रशासनिक विषयों पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि CEO ट्रस्ट के अधीन ही काम करेंगे।
4: मुख्य प्रबंधक अधिकारी होंगे तो वह ट्रस्ट के अधीन प्रबंधन का कार्य देखेंगे, और यह तो ट्रस्ट पर निर्भर करेगा कि वह किस प्रकार का डेलीगेशन CEO को करते हैं, और जैसा डेलीगेशन करेंगे वैसे ही फिर CEO जो है वो अपना स्टाफ वहां पर व्यवस्था की करेंगे, लेकिन सब कुछ ट्रस्ट के अधीन है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल News on AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं।

0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी।
1: ईपीएफओ की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज जालौन जिले में आधुनिक सुविधाओं से युक्त तरणताल और विकसित खेल परिसर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश में कल और 14 जुलाई को 2 दिन सभी जिलों में विश्व कौशल दिवस के अवसर पर वृहद रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। इन मेलों में जीरो पॉवर्टी अभियान में चिन्हित गरीब परिवारों के युवाओं और दिव्यांगों को वरीयता के आधार पर रोजगार दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि इन 2 दिवसीय रोजगार मेलों में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाए। QR कोड के जरिए युवाओं का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, फिर रुचि और योग्यता के आधार पर विभिन्न कंपनियों में उन्हें रोजगार मिलेगा। इस सिलसिले में सभी जानकारियां युवाओं को ITI में दी जाएंगी। 14 जुलाई को प्रयागराज जिले के नैनी स्थित माँ गायत्री महाविद्यालय में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 3000 रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में कल से वर्षा का क्रम जारी है। मौसम केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि राज्य के तराई और पूर्वांचल के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है।
2: उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो जैसा कि मानसून ट्रफ तराई बेल्ट में शिफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र हैं जैसा कि लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, कुशीनगर, देवरिया में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। बाकी जगह की बात करें तो स्पेशली पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे बादलों की आवाजाही रहेगी तथा कुछ जगहों पे छिटपुट वर्षा की संभावना है। तो कुल मिला के सिलसिला आने वाले अगले 2 से 3 दिनों तक रहेगा। और राजधानी लखनऊ की बात करें तो वहां पर थोड़ा बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी हो सकती है।
0: उधर लगातार हो रही वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बलिया में गंगा, आगरा और इटावा में यमुना, बिजनौर में रामगंगा, झांसी में बेतवा और सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में पौधरोपण महाभियान के तहत लगाए गए 35 करोड़ से अधिक पौधे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले 9 वर्षों में राज्य में भौतिक विकास के साथ वन क्षेत्र में भी हुआ विस्तार। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल करेंगे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का लोकार्पण। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नीपेन मिश्रा ने कहा, 22 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति पर होगा फैसला, न्यास के अधीन ही करेंगे काम। और बारिश के बाद आगरा में यमुना और बलिया में गंगा समेत कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन पूर्वांचल के कई स्थानों पर बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

यवतमाल से जयराम, दिशांत कुमार और अर्पिता, रायपुर छत्तीसगढ़ से वीणा मंडलकर और विविधा, ये संदेश है चह का नाम हलगापुरा ग्रामा से डॉक्टर चित्तराजू पूर्णमा अरुण कुमार, एचपी उच्च बुढ़ा और इनके परिवारीजन, डोंगरगाम छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी, अनिष्का और तन्मय, केंथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनीता शर्मा, मोहाली से टीडी मेहलुत्रा, शुभचंद बजाज, प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक से सुरेश जाधव, अनीता, आरती, प्रसाद, सोनल, बेबी, जालना, मुंदी चौक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी, पद्मा टाकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्वनी, मंगला बैन और राजेंद्र जी शाह, भाई प्रेम सिंह, सुखवीर, काजल, लखवीर, रानी कृष्णा, श्रीमती छिंदो, प्रवीण, शीतल, नवीन, रंगीला, निशान, अनमोल, दीवाना रेडियो श्रोता क्लब राजस्थान से आप सब सुनना चाहते हैं ये गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को आपने सुना फिल्म अनजाना में। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल और निशा। गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे, मारुत राव पांचाल, रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, देवाश्री, वर्षा, सुमन, कीर्ति भारती। बुलढाणा महाराष्ट्र से वासुदेव और अनीता। तालुका महाराष्ट्र से मंड लोहार पोपलघट। आप सब सुनना चाहते हैं ये गीत।

जसपाल सिंह और हेमलता को आप सुन रहे थे फिल्म नदिया के पार में। अब हमें संदेश मिले हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, बीरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला और भावेश, जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सविया, अनस और रेहान, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही, गनगोला दादागंज जिला बदायूं से इसरत खान, शायरा बेगम, रहूब खान और साबरीन बेगम, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती रिमझिम गुप्ता, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, पूजा वर्मा, निखिल और यशस्वी, चंडीगढ़ सिटी से शेफाली, शेफी, डेविस, बिमला और सतीश अनेजा, मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस भाई, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरडी से नाना लाम से मीना, तेजस, जय और हर्षिता लाम से, गांव पजेनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार, आदर्श, सार्थक, आलोकिक और इनके परिवारजन। आप सब सुनना चाहते हैं ये गीत।

आप सुन रहे थे कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल को, फिल्म का नाम था फूल और कांटे। इससे पहले जो गीत आपने सुना वो था मुझे कुछ कहना है फिल्म से, गायक स्वर से प्रीति पिंकी और उनके साथी। इसी के साथ आज का शाम सुहानी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को आपने सुना। फिल्म का नाम था नया दौर। और आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति को फिल्म मोहरा में।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश को। फिल्म का नाम था नूरी। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मदर इंडिया फिल्म के कुछ गीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को।

सब वे स्वरों में आप सुन रहे थे देशगान, और आइए अब सुनते हैं एक ही फिल्म से कार्यक्रम। आज की फिल्म है मदर इंडिया। सबसे पहले ये गीत।

आप सुन रहे थे मन्ना डे को। इससे पहले जो गीत आपने सुने उसमें आवाजें थी लता मंगेशकर की। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं मदर इंडिया फिल्म के कुछ गीत। आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: आप सुन रहे थे शमशाद बेगम, मोहम्मद रफ़ी और साथियों को। इस गीत के साथ ही आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज आपने मदर इंडिया फिल्म के कुछ गीत सुने। एक बार सुहाने तराने भी आप सुनेंगे 9:15 पर। ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। 8:45 होने को हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा हॉर्मूज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में U23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ोरेव का मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
2: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि 1 लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि हॉर्मूज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन

0: चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का होर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फुकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
1: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे ना तो स्वीकार करता है और ना ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
2: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। यह अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
3: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर

0: जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है, आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत से विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
2: गृहमंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुओ हानयू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील हैं। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रखा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा, ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देशभर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

महेंद्र कपूर, सलमा आगा और आशा भोसले को आपने सुना फिल्म निखा में। सुहाने तराने का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ हरियाणवी गीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

और इस गीत के साथ ही प्रादेशिक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज आपने होशियारी देवी का गायन सुना। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से लेकर आएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: श्री कुमार मल्डोर का गायन। संगीत नाटक अकादमी की ओर से उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार पा चुके कुमार मल्डोर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रखर गायक के रूप में जाने जाते हैं। किराना और ग्वालियर घराने की गहरी समझ के साथ साथ अपने पिता पंडित सोमनाथ मल्डोर से मिली तालीम ने उनकी गायकी को एक अनोखा अंदाज दिया है। दिग्गज उस्तादों की प्रेरणा से सजी उनकी इस गायकी में जयपुर, अतरौली और अन्य घरानों की झलक भी मिलती है। एक बहुमुखी कलाकार और संगीतकार के रूप में कुमार मल्डोर ख्याल, ठुमरी, हिंदी भजन, मराठी अभंग, कन्नड़ दास साहित्य, कन्नड़ वचन साहित्य और कई अन्य संगीत परंपराओं का अन्वेषण करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार कुमार ने देश भर के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में अपनी प्रस्तुति दी है।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय श्री कुमार मल्डोर अवार्डेड द उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार बाय द संगीत नाटक अकेडमी। कुमार मल्डोर स्टैंड्स आउट एज अ गिफ्टेड हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट। हिज ग्राउंडिंग इन द किराना एंड ग्वालियर घरानाज अलॉन्ग विथ ट्रेनिंग अंडर हिज फादर पंडित सोमनाथ मल्डोर has led to a unique gaiki that weaves in elements from Jaipur, Atrauli and other gharanas, built on deep riyas and inspiration from legendary maestros. A multifaceted performer and composer, Kumar explores khayal, tumri, Hindi bhajans, Marathi abhangs, Kannada dasa sahitya, Kannada vachana sahitya and many other traditions. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Kumar has performed throughout the country in various prestigious concerts.
0: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे हैं। श्री कुमार मल्डोर अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग छायानट से कर रहे हैं। विलंबित झुमरा इनायत हो, द्रुत तीन ताल एरी मालनिया, द्रुत तीन ताल तराना।
1: In tonight's program, he is accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath. Shri Kumar Mardur will begin his vocal recital with Raag Chhaya Nat, Vilambi Jhumra, Inayatahu, Drut Teen Taal, Eri Maliniya, followed by Tarana in Drut Teen Taal.

0: अभी आपने सुना राग छायानट। अब श्री कुमार मल्डूर प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित एकताल सकी मना लागिना, द्रुत एकताल बिनती कराता।
1: यू जस्ट हर्ड राग छायानट। श्री कुमार मल्डूर विल नाउ प्रेजेंट राग बागेश्री। विलंबित एकताल सखी मना लागेना, द्रुत एकताल बिनती करता।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग बागेश्वरी। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री कुमार मरडूर का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे थे।
1: That was Raag Bageshri. With that, we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha, in which you were listening to a vocal recital by Shri Kumar Maradur. He was accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: This program was earlier recorded at Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरु मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
4: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुस जलडमरु मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुस जलडमरु मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का

नाम के फुसकॉक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के ऑर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।